शाह आज नई दिल्ली में लैंड फोर्स मैनेजमेंट सिस्टम LCMS का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीक की मदद से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। यह पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय आज से प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर देश भर में विशेष कार्यक्रम शुरू करेगा। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को की थी। इसका उद्देश्य सभी गर्भवती महिलाओं को मुफ्त और अच्छी गुणवत्ता वाली प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस अवसर पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। समारोह के दौरान स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 75 रूपए का स्मारक सिक्का और 5 रूपए का डाक टिकट भी जारी करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि नवाचार, वैश्विक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक बढ़ती पहुंच से अगले 5 वर्षों में भारत का फार्मा उद्योग दोगुना होने की संभावना है। नई दिल्ली में फार्मास्यूटिकल क्षेत्र पर आयोजित ग्लोबल एम्बेसडर मीट को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारत ने हाल के वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौते किए हैं और अब भारत के 50 से अधिक देशों के साथ व्यापारिक समझौते हैं। इससे भारतीय उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत अब केवल जेनरिक दवाओं तक सीमित नहीं है बल्कि अनुसंधान, नवाचार और उच्च मूल्य वाली औषधियों के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। श्री गोयल ने देश भर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए भव्य पोर्टल का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि यह पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा। उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत बेहतर सड़क, रेल और अन्य परिवहन सुविधाएं, बिजली तथा पानी की व्यवस्था, डिजिटल प्रशासन, श्रमिकों के लिए सुविधाएं और पर्यावरण अनुकूल विकास पर ध्यान दिया जाएगा। इंडिया ब्लॉक की कल नई दिल्ली में बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थी। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक के लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में हुई आग की दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 घायल हुए हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार यह हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रूपए और घायलों को 50,000 रूपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं केंद्रीय इस्पात मंत्री अजय कुमार स्वामी और नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कल रात दुर्घटना स्थल का दौरा किया। श्री कुमार स्वामी ने मृतकों के परिजनों के लिए 25 लाख और घायलों को 10 लाख रूपए की सहायता राशि तथा बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की है। यह फैसला अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तत्काल युद्ध विराम की अपील के बाद लिया गया है। हालांकि दोनों देशों ने चेतावनी दी है कि किसी भी नए हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि दोनों पक्ष संघर्ष विराम चाहते हैं और शांति वार्ता जारी है। वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ने कहा है कि उनका देश कूटनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों के प्रति प्रतिबद्ध है। दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिम मध्य और पूर्व मध्य अरब सागर के कुछ हिस्सों तथा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ भागों तक पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

बहुत सिंपल, स्वामी विवेकानंद ने कहा था है, जब तक जीवन है तब तक सीखना है। अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। ये था आज का चिंतन। वंदनवार में ये भी सुनिए भक्ति रचना।

लोगों का मेरी टीम ने आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। आज कुछ देर बाद 6:35 से आप सुनेंगे रामचरित मानस का भाव 214। 6:45 से संगीत सरिता में आप सुनेंगे श्रृंखला सीनी संगीत में तबले का दौर। इस श्रृंखला का 9वां भाग आज आप सुनेंगे। कलाकार तबला वादक रविंद्र खासी, प्रस्तुति मनीषा जैन। सात बजे से भोले दूसरे गीत और 7:30 से हम है राही प्यार से। आज तक 15 मिनट और दोपहर 2 बजे से त्रिवेणी लेकर आएंगे। सुबह और रात्रि 8:30 से, माफ कीजिए, सुबह 8:30 से और रात्रि 8:15 से चित्र लोग। सुबह 9:30 से लेकर आएंगे आज के संकार। आज ही प्रोग्राम केंद्रित होगा संकार राज घोटला पर, प्रस्तुतकर्ता रमेश भोगे। बजे से पिटारा में सुनिए मधुमेह कारण और बचाव, डॉक्टर कुणाल मेहता की बातचीत आप सुनेंगे। 11 बजे से रंगकरण और 12:05 से यादों की महफिल। 1 बजे से कार्यक्रम होगा सुरीला सफर, 2:30 से सभा बाहर नग्न और 3 बजे लेकर आएंगे प्रोग्राम।

बजे से लेकर आएंगे सितारा में सेलुलॉइड के सितारे में अभिनेत्री वहीदा रहमान से कमल शर्मा की बातचीत। पाँच बजकर 30 मिनट से तराने नए पुराने, 6:35 से भक्ति गीतों का कार्यक्रम संध्या रंजन सुनेगा।

सभी से लेकर आएंगे पौधे साथियों के लिए कार्यक्रम जयमाला। सात बजकर 45 मिनट से इंद्रधनुष में पॉप एक्सप्रेस

नौ बजे से आपके लिए लेकर आएंगे कार्यक्रम आपके लिए। रात 9:20 से आज के फनकार केंद्रित होगा गीतकार अशोक भोपाली पर, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। रात 10 बजे समय होगा छायागीत का, भूली जाए रात 10:20 को और रंग तरंग का वक्त होगा रात 11 बजे से। घरों का में अभी आप सुन रहे थे आज के शेष प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

से श्री राम, सीता और लक्ष्मण के साक्षात्कार और चारों भाइयों के परस्पर मिलन का दृश्य, जहाँ एक ओर स्नेह सिंचित था, वहाँ दूसरी ओर अयोध्या पति के निधन के समाचार ने एक बार फिर सभी को शोक के सागर में डुबो दिया। दूसरे दिन कुलगुरु के आदेशानुसार वैदिक रीति से श्रद्धा भक्ति पूर्वक शास्त्र संपन्न करके वैसे ही सिद्ध हुए जिस प्रकार तीर्थों के आवाहन से पतित पावनी गंगा शुद्ध होती है। अद्भुत दृश्य उपस्थित है चित्रकूट में, जहाँ दुखी अयोध्यावासी कंदमूल और फल का आहार करते हैं। भरत शत्रुघ्न मंत्रियों तथा माताओं को व्याकुल देख श्री राम को एक एक पल भारी हो रहा है, अतः उन्होंने वशिष्ठ जी से सबको लेकर अयोध्या लौट जाने का आग्रह किया।

0: Cristo risale, si ravvinge a questo, e se va a finire così, dentro fatica, verso te, e scende a te, non per me. Namaskar, ravvinge di tal vadio chi, per un sangitme, giù, उपयोगिता है और जिस तरह से उनका इस्तेमाल हो रहा है अलग अलग तालों की चर्चा भी हम कर रहे हैं
1: हाँ
0: ताल गहरवा जितना एक और ताल है दादा
1: हाँ
0: वो भी बहुत प्रचलित है
1: बिल्कुल है
0: और बहुत से ऐसे गाने हैं जिनमें ताल दादरा का उपयोग हुआ है तो मूल रूप से ये दादरा ताल कैसे बजाया जाता है
1: जैसे खेरवा हमें कई सारे गीतों में सुनने को मिलता है
0: जी
1: वैसे दादरा है दादरा भी हमें कई सारे गीतों में सुनने को मिलता है
0: जी
1: तो दादरा जो है वो तो मूलतः दादरा तो केवल धा धी ना धा धी धा धी ना धा धी ये तो दादरा ताल है लेकिन ये जो ताल है ये ताल कई सारे गीतों में आया है तो इसको जब गीतों में ढाला जाता है इस ताल को तो उसमें जो है वो एक नजाकत लाने की दृष्टि से उसमें वो परिवर्तन किया जाता है
0: जी
1: तो वो दादरे में जो परिवर्तन है वो इस तरह का है

0: बहुत सटीक होता है, सटीक बैठता है और वहाँ से फिर गीत का जो प्रभाव है वो भी बढ़ता है। तो दादरे में तो वैसे कई सारे गीत बने हुए हैं। तो दादरा जैसे हमने कहा था कि अलग अलग पैटर्न होते हैं, तो वैसे दादरा के भी कई सारे पैटर्न इस्तेमाल किए गए हैं और वो पैटर्न भी एक वजह है कि जिसकी वजह से हर गाना हमको सुनने में अलग लगता है। एक गाने के दूसरे गाने में समानता नहीं लगती, हर गाना अपना अपना एक खुद का अस्तित्व लेके आता है।
1: जी।
0: तो ये जो है ये चमत्कार उस पैटर्न का है, जो पैटर्न वो गीत को सजाता है
1: और हर संगीतकार अपने ढंग से अपनी संगीत रचना में इस ताल का उपयोग करते हैं।
0: बिल्कुल करते हैं।
1: तो अब बात वही है कि फिर हमें किसी फिल्मी गीत का उदाहरण लेना होगा।
0: हाँ, मेरा बहुत पसंदीदा गीत है
1: जी,
0: जिसमें दादरा का बहुत प्रभावी उपयोग किया गया है।
1: हाँ।
0: वो है वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जला रहा
1: है। बड़ा सुंदर गाना है, जहां आरा सिंह का ये गीत है।
0: हाँ।
1: और संगीतकार है मदन मोहन साहब,

0: प्रकार गहरवा कान के प्रकार आपने बताया।
1: हाँ
0: वैसे ही दादरा ताल के भी कुछ प्रकार हैं, वो कौन से?
1: दादरा ताल के भी प्रकार है, अभी मैंने बताया कि उसको ये मूल रूप जो है धा उसको किया है। अभी ये इसी रूप को और थोड़ा सा बदला है, उसको कहते हैं खेमता। ये खेमता जो है गरबा नृत्य के लिए, मतलब गरबा नृत्य के जो असंख्य गीत है तो उसमें हम लोग हमेशा सुनते हैं और उस पर गरबा नृत्य गुजरात में होता है।
0: नवरात्रि के दौरान लगभग सभी भारतीय जानते हैं कि डांडिया खेला जाता है, रात गरबा होता है, तो गरबा में जो गीत बजते हैं
1: वो एक खेमता ताल
0: खेमता ताल में है।
1: तो वो खेमता कैसे है

0: क्या बात है। इसमें मैंने दो प्रकार भी किए हैं
1: जी।
0: अभी क्षमता जो है वो क्षमता का आगे थोड़ा सा रूप बदला है, मतलब लय बढ़ती है या उसके बाद में जो उसका जिस तरह से उसको बजाया जाता है उसको कई जगह पर हिंच भी कहते हैं।
1: अच्छा
0: हाँ, तो वो जो हिंच है वो इसी मतलब क्षमता के साथ में ही वो जुड़ी हुई है। अक्सर ढोलक के साथ में जब तबला ये दादरा का ये प्रकार बजाया जाता है तो ढोलक के साथ में फिर वो उसकी नज़ाकत और भी अच्छी लगती है और खूबसूरत लगता है वो, और उसी के लिए वो उस तरह से उस अंदाज में बजाया जाता है।

0: फिल्म संगीत में हमें चिंता का स्थान सुनने को मिलता है या तालहीन की आवाज कर रहे थे।
1: हाँ,
0: इसे अगर फिल्म संगीत में ढूंढने जाए तो कौन से गीत याद आ रहे हैं?
1: फिल्म सरस्वती चंद्र में मैं तो भूल चले बाबू
0: जी, इसमें चिंता ताल का बहुत सुंदर इस्तेमाल हुआ
1: है। बिल्कुल,
0: और हिंद से हमें कहाँ सुनने को मिलती है?
1: दिल अपना और प्रीत पर आई, ये जो गाना है
0: जी,
1: वो ढोलक के साथ में
0: मिलती है।
1: आवाज फिर से
0: तो आइए इन दोनों गीतों की

लता मंगेशकर और साथियों के स्वरों में साल खेमता पर आधारित इस गीत की झलक आप सुन रहे थे। संगीतकार कल्याण जी आनंद जी। और अब सुनते हैं दिल अपना और प्रीत पराई फिल्म के शीर्षक गीत की झलक, जिसमें साल हिंद से हमें सुनने को मिलता है। संगीतकार संगीत

जींस में निबद्ध ये गीत था दिल अपना और प्रीत पराई। इस फिल्म से लता मंगेशकर के स्वर में संगीत शंकर जयकिशन का। इसी के साथ हमें अब अनुमति दीजिए।

सिकंदर इस दिन से भी दरिया सुंदर रियासतों की और कलत महमूद की आवाज में असद भोपाली ने लिखा था हंसराज जहल का संगीत था। आज गीतकार असद भोपाली जी की पुण्यतिथि है। आज भोले रिश्ते गीत में उन्हीं के लिखे गीत आपको सुनवा रहे हैं और आज रात 9:30 पर आप सुनेंगे आज के फनकार जो कि केंद्रित होगा गीतकार असद भोपाली पर।

मेरी दरिया खुल रही थी, मैं डरती थी। असद भोपाली ने ठीक से लिखा था और मनोहर ने संगीत दिया था। आज के नए प्रोग्राम भोले बिखरे गीत रवि भारती से।

0: तो और सही। मेघा फिल्म का नाम मोहम्मद रफी यात्रा भोसले की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे। रवि ने संगीत दिया था और अशोक भोपाली ने इस गीत को लिखा था।
1: एक खुशखबरी, सभी ना आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियों फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें।

0: दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच मधु सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा। प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिन की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
1: मेरे भारतीय प्रोग्राम बोले दिखेगी।

प्रगति की आवाज में ये दरियाफ्त सुन रहे थे अलीबाबा और चालीस चोर फिल्म से। आसिफ भोपाली ने गीत को लिखा था, उषा खन्ना का संगीत था। आज का कार्यक्रम गीत चार आसिफ भोपाली जी पर आधारित है। आज उनकी पुण्यतिथि है और आज रात 9:30 पर आज के संस्कार उन्हीं पर केंद्रित होगा।

प्राप्त कर रहे थे, अब कहां से उसे अर्थ भोपाल ने गीत को लिखा था उसने लाल भगत राम का संगीत था। इसी साथ ही आज का

तो दिल ही जाने। रूप तेरा मस्ताना इस फिल्म से गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी और इसे लिखा था असद भोपाली ने। आज इस कार्यक्रम में आपको सुनवा रही है गीतकार असद भोपाली द्वारा लिखे गीत।

सदा बहार गानों के बहते सोमवार से शनिवार दिन 2:30 बजे।

प्रगति और आशा भोसले को आप सुन रहे थे। इस गीत में कौन सा नाम था तू नहीं और सही, अशोक भोपाली ने इसे लिखा था और रवि का संगीत था।

विद्यार्थी जब आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हम हो रहे हैं।

0: नतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से इंदौर में शुरू होगा। मस्कत में भारतीय दूतावास ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में एमटी मारीडेक्स जहाज में लगी आग की घटना में सभी 24 भारतीय नाविकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की। ईरान और इजराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की। युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर फिर से जवाबी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। अमरीका की संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा के लिए प्रस्तावित $1,00,000 का शुल्क रद्द किया। और भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच त्रिकोणीय एकदिवसीय श्रृंखला का पहला मैच आज श्रीलंका के दाम्बुला में। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीकी सहायता से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: गृह मंत्रालय ने कहा ये प्लेटफॉर्म व्यापार सुगमता, संपर्क, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और 2047 तक विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप है। LPMS एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे भूमि बंदरगाहों के संचालन को एकीकृत प्रणाली में समाकलित करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये प्रणाली कार्गो और यात्री प्रसंस्करण के लिए स्लॉट बुकिंग, भुगतान, ट्रैकिंग और सिंगल विंडो क्लियरेंस सहित संपूर्ण डिजिटल कार्य प्रभावी प्रदान करेगी। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के दावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंडपोर्ट में नवविकसित हितधारक आवास सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे, जिससे सीमा प्रबंधन और कर्मियों के लिए बुनियादी ढांचागत सहायता मजबूत होगी। शिवानी शाह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो रहा है। सम्मेलन में 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। इनमें ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुँच बढ़ाने पर चर्चा होगी।
2: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो, इसी व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में

0: टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सहयोग, नवाचार और खाद्य सुरक्षा मजबूत करना है।
2: भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित कुल 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ भाग लेंगे। 13 जून तक चलने वाले इस सम्मेलन की शुरुआत कृषि कार्य समूह की बैठकों से हो रही है। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, कृषि नवाचार, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे अन्य विषयों पर चर्चा होगी। 12 जून को कृषि मंत्रियों का विशेष संवाद आयोजित होगा, जिसका फोकस लघु किसानों, महिलाओं एवं युवाओं के माध्यम से भविष्य की खाद्य सुरक्षा पर रहेगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। समारोह के दौरान श्री नड्डा 75 रुपए का स्मारक सिक्का और 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार मोदी सरकार के 12 वर्षों के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों की जानकारी देंगे। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी मजबूत किया है, जिससे यह पहले की तुलना में अधिक सुलभ, किफायती और बेहतर गुणवत्ता वाली बन गई है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का इलाज उपलब्ध कराया गया। वहीं सरकार ने अक्टूबर 2024 में इस योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत वय वंदन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली के रोहित सिंह ने बताया कि इस कार्ड से अब वे निजी अस्पतालों में भी इलाज करा सकते हैं।
3: आयुष्मान कार्ड से मुझे बहुत फायदा होगा, क्या मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकूंगा अपना और अपनी फैमिली का, इससे मुझे मतलब 5 लाख रुपए मिलेंगे।
1: वहीं सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बिहार के दिलीप कुमार ने बताया कि जन औषधि केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिल जाती है।
4: यहाँ पर बहुत ही सस्ता है, 100 का दवाई सस्ते में मिल रहा है, और हमारा रुपया बहुत बचत हो रहा है।
1: सरकार ने बढ़ती स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नवंबर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की। देश भर में अब तक कुल 942 आयुष संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने अस्पतालों के विस्तार और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत कर स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक अधिक सुलभ और बेहतर बनाया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष में भारत के कोयला और खनन क्षेत्र में बड़ा बदलाव हुआ है। हैदराबाद में कल श्री रेड्डी ने बताया कि भारत ने 1 अरब टन कोयला उत्पादन का रिकॉर्ड हासिल कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश बन गया है। उन्होंने कहा कि कोयला क्षेत्र से लगभग 5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और 25 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिल रहा है। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में आग की घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है और 6 अन्य घायल हो गए हैं।

0: की हालत गंभीर है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार यह हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतकों के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं इस्पात मंत्री एसबी कुमार स्वामी और नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कल रात दुर्घटना स्थल का दौरा किया। श्री कुमार स्वामी ने मृतकों के परिजनों के लिए 25 लाख और घायलों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि तथा बच्चों को निशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने हादसे की जांच के लिए एक विशेष समिति गठित की है। समाचार कक्ष से मैं चाहत सिंह।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने हादसे की जांच के लिए एक विशेष समिति गठित की है। समाचार कक्ष से मैं चाहत सिंह।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ओमान के मस्कत में भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में एंटी मेरिगेट जहाज पर लगी आग के बाद 24 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। दूतावास ने त्वरित कार्रवाई के लिए ओमान का आभार भी जताया है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के प्रवक्ता उपेश कुमार शर्मा ने बताया था कि दोपहर करीब 1:30 बजे जहाज पर आग लगने की सूचना मिली। हादसे की जांच जारी है। अमरीका की एक संघीय अदालत ने H-1B वीजा आवेदनों पर लगाए गए $1,00,000 के शुल्क को अवैध करार दिया है। ये शुल्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया था। अदालत ने कहा कि संसद की मंजूरी के बिना ऐसा शुल्क नहीं लगाया जा सकता। H-1B वीजा के जरिए अमरीकी कंपनियां दुनिया भर के कुशल पेशेवरों को नौकरी देती हैं। भारतीय मूल के कई संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। ईरान और इसराइल के बीच एक दूसरे के खिलाफ हमले रोकने की घोषणा हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दोनों पक्ष तत्काल संघर्ष विराम और शांति वार्ता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों देशों ने चेतावनी दी है कि युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर ये प्रक्रिया फिर से बाधित हो सकती है। भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला का पहला मैच आज श्रीलंका के डाम्बुला में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10 बजे से शुरू होगा। श्रृंखला में अफगानिस्तान ए की टीम भी शामिल है। भारत ए का अगला मैच अफगानिस्तान ए से बृहस्पतिवार को होगा। फाइनल 21 जून को होगा। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के पहले अभ्यास मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 26 रन से हरा दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 179 रन बनाए। भारतीय फुलमाली ने नाबाद 56 रन और स्मृति मानधना ने 39 रन का योगदान दिया। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 153 रन ही बना सकी। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिमी और उत्तरी राज्यों तथा पश्चिमी राजस्थान और विदर्भ में आज लू चलने की आशंका व्यक्त की है। कोंकण और गोवा, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराकल में दिन भर गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। तटीय कर्नाटक, केरलम, माहे और उत्तरी तथा दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में आज तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
2: धन्यवाद मुकेश। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों में बगावत की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, TMC में टूट, 20 सांसदों का अलग गुट NDA के साथ। पत्र के अनुसार काकोली घोष की अगुवाई में अलग सिटिंग की भी मांग। दैनिक जागरण ने तृणमूल में एक और टूट शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, जैसी आशंका थी तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा सदस्यों ने भी ममता बैनर्जी के खिलाफ बगावत कर दी है। इससे पहले पार्टी के 80 में से 60 विधायक अलग गुट बनाकर नेता प्रतिपक्ष का चयन कर चुके हैं। पंजाब केसरी ने विपक्षीय एकता का अंतर विरोध शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, हाल में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली शानदार सफलता बताती है कि इंडिया गठबंधन में इतनी भी कुवत नहीं है कि उसके सहयोगी दलों के नेता एक साझा मंच पर इकट्ठे होकर भाजपा को ललकार सके। हिंदुस्तान ने सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को का साक्षात्कार देते हुए लिखा है, चीन से सिर्फ उम्मीद के भरोसे शांति संभव नहीं, थिएटर कमान पर भी सहमत। जनसत्ता के अनुसार इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर हमले किए। 8 अप्रैल के बाद यह गंभीर झड़प, ट्रंप की अपील के बाद दोनों देशों ने किया संघर्ष विराम। पत्र के अनुसार भारत ने नागरिकों को सलाह देते हुए लिखा है, ईरान और इसराइल छोड़े भारतीय और यात्रा भी न करें। अमर उजाला ने दिया है, वायुसेना के हेलीकॉप्टर पहुंचाएंगे नीट के प्रश्न पत्र, पहली बार सरकारी प्रोफेसर और शिक्षकों ने तैयार किया पेपर। बाहरी को जिम्मेदारी नहीं, लॉजिस्टिक्स सेंटर से परीक्षा केंद्र तक GPS से निगरानी। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से लिखा है, पिछले 12 वर्ष में भारत में कई परिवर्तन आए। देशबंधु की सुर्खी है, कल्याणकारी योजनाओं से 12 वर्ष में 25 करोड़ लोग गरीब।

0: निकले।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय वृक्ष कृषि सम्मेलन आज से इंदौर में शुरू होगा। मस्कत में भारतीय दूतावास ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में एमटी मरीनेक्स जहाज में लगी आग की घटना में सभी 24 भारतीय नागरिकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की। अमरीका की संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा के लिए प्रस्तावित $1,00,000 का शुल्क रद्द किया। और भारतीय और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच त्रिकोणीय एकदिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज जाम्बुला में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

खुशियाँ बहुत छोटी छोटी चीजों में मिल जाया करती थी। फुर्सत के क्षणों में परिवार के साथ बैठकर बोलना, बतलाना, खाना पीना, हंसी खिठोली, बातें करना, छत पर देर तक बातें करना, चांद सितारों को निहारना, त्योहारों की हलचल, इन सब में हमारे चेहरे पर खुशी और मुस्कान खिली रहती थी। साधन उस समय सीमित थे, लेकिन प्रेम और अपनेपन की मिठास खुली रहती थी। आज हमारे पास सब कुछ है, फिर भी हम खुश नहीं हैं। हमारे मन में खुशी कम होती जा रही है, लेकिन खुश रहना कितना जरूरी है हमारे स्वास्थ्य के लिए? आज हमें ये सोचने की फुर्सत नहीं है। जब हम खुश होते हैं तो मन में जैसे तरंगे आते हैं, मन में ऊर्जा पैदा होती है। जब हम खुश होते हैं तो हमारा मन उड़ जाता है मुक्त आकाश की ओर, और पांव जमीन पर नहीं पड़ते।

कोई व्यस्त है, सबके पास मोबाइल है, सोशल मीडिया का जमाना है। सोशल मीडिया एक दुधारी तलवार की तरह हमें बहुत सारी उपलब्धियां तो देता है, तो दूसरी ओर हमारे अपनों से हमें दूर करता जा रहा है। एक दूसरे के लिए हमारे पास समय कम होते जा रहे हैं, साथ रहते हुए भी मन की दूरी बढ़ती जा रही है। अपेक्षाओं और आकांक्षाओं की आगे बढ़ने के लिए मन को समय लगी है। किस्तों में आत्मीयता और दिलों की चमक, मन की मिठास

प्रियना, किसी के सुख दुख को बांट लेना, सहयोग के दो शब्द कह देना, नीचे बोल बोल देना, ये सभी चीजें जीवन को जीवंत बनाए रखता है। तब हमारी स्वयं चिकित्सा पद्धति सुकून और पूरा ब्रह्मांड खुश होता है। पेड़ पौधे खुशी से झूमते नजर आते हैं। सकारात्मक सोच, स्वास्थ्य का ध्यान, दूसरों से तुलना न करना, वर्तमान में जीना, माफ करना और संतोष करना, इन नियमों का पालन मानसिक शांति जीवन में चेतना लाती है। जीवन खुशियों से भर जाता है और जिंदगी को पूरी तरह से

नाम कोई एक शहर पर नहीं रखे तो तनाखिर नाम दिया, जिसके छोटे नागपुर से जुड़े जितने भी जिले हैं उनको ये टीम अपनी टीम की तरह लगे और वो इस दौड़ में सबसे मारा गया। फिर टीम बनाने की जब बात आई तो हमने एक बैलेंस टीम बनाया, हमने बड़े नाम भी दिए और नया टैलेंट भी दिया जो जूनियर प्लेयर्स है जिनको अभी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा।

0: तू स्तन से जीवन यापन रखे हुए नौकियान की आवाज में और अब वक्त हो चला है किस्मत में छोटे से अंतराल का।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का

0: नमस्कार जयंती पूरी एफएम 100.8 मेगाहर्ट्ज पर सभी समय में सुबह 11 बजे से
1: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम।

0: साथियों को अपनी बात कहने का कृपया फोन पर उनसे बताए अपने दिल की बात और फरमाइश करे अपने पसंदीदा गाने की बात। के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपने पसंद के गाने।
1: आप सुन रहे हैं सिर्फ लोग विविध भारती से। एजेंट विनोद इस कंपनी की अरिजीत सिंह की आवाज में, सीजन का संगीत है अमिताभ।

की दरियात में बैठी कविता कृष्णमूर्ति और साक्षा तिरुपति की आवाज में जावेद अख्तर ने इसे लिखा और तनिष्का ने लिखा। शूटिंग को सहयोग यह फिल्म का नाम शेखर दावजानी समीर जलीम मर्चेंट और साथियों की आवाजें विशाल शेखर का संगीत

के हैं संगीत भूल बिखरे जी कुछ दौर की आवाजें दिलों की धनों की बर्बाद सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिखरे जी हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर आप सुन रहे हैं सच लोग इस वक्त विविध भारती से रावता संगीत का नाम है अरिजीत सिंह की आवाज में गीत सुनिए शीशम का संगीत है अमिताभ

0: के प्रोग्राम आज के फनकार। दोस्तों आज के फनकार हैं अपने दौर के जाने माने फिल्मकार राज खोसला।
1: बहुत शुक्रिया।

जैसे किसी किसी बातों का जिक्र जब होता है तो तमाम लोग उन्हें बतौर निर्देशक, निर्माता या पटकथा लेखक के रूप में जानते हैं। लेकिन राज खोसला एक प्रशिक्षित क्लासिकल सिंगर भी रहे थे। 31 मई 1925 को पंजाब के लुधियाना में जन्मे राज खोसला बहुआयामी प्रतिभा के स्वामी थे। वो जब गायक बनने की चाह लेकर तत्कालीन बॉम्बे आए तब वो ऑल इंडिया रेडियो में बाकायदा म्यूजिक स्टाफ के रूप में

शुरू से ही वुमेन डायरेक्टर कहा जाता रहा है। दोस्तों फिल्में जो भी हो लेकिन नारी के चरित्र को राज खोसला ने बड़ी महत्ता दी है अपनी फिल्मों में। 1964 में उन्होंने निर्देशित की फिल्म वो कौन थी, जिसमें अभिनेत्री साधना को मिस्ट्री

कुर्सी पे आंगन की। दोस्तों इस फिल्म के लिए अभिनेत्री नूतन को मैच्योर एज में फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी प्राप्त हुआ है।

गुरु देवानंद ने राज खोसला की प्रतिभा को पहचाना था शुरू और राज खोसला के डायरेक्टर बनने का ये सिलसिला शुरू हुआ था 1954 में बनी फिल्म गुलाब के साथ। इस फिल्म के हीरो थे देवानंद और नायिका थी गीता बाली और उसके बाद राज खोसला ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।

इस्लाम शास्त्रीय संगीत के जानकार थे, क्लासिकल सिंगर थे। यही वजह है कि अपनी फिल्मों की नायिकाओं के किरदार की महत्ता बनाए रखने के साथ साथ ही उनकी फिल्मों का संगीत भी बेहतरीन होता था।

से हटकर शायद से हटकर भी चंद फिल्मों का निर्देशन किया दोस्तों। इसमें प्रमुख है 1958 की फिल्म सोलवा।

के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। दोस्तों, राज खोसला ने अपनी हर एक फिल्म के संगीत को बेहतर से बेहतरीन बनाए रखा। 9 जून 1991 को राज खोसला ने अपने जीवन की अंतिम सांस

के जाने माने फिल्मकार राज खोसला पर कार्यक्रम में प्रस्तुति सहयोग दिया आकांक्षा सिंह ने, कार्यक्रम के प्रस्तुत करता रमेश गोखले। और अब दीजिए आज के प्रोग्राम से अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत।

0: funny, but Jill, he does impress.
1: You know how to
0: No, I does, buddy.
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग।

sevdiğine dostluğundan sadece 7 politik ve verim hareketi için bir sevgili sevgili sevgili sevgili sevgili sevgili sevgili sevgili sevgili sevgili sevgili sevgili हम आपको बता दें आज के इस कार्यक्रम में आपसे मिलेंगे जगजीत सिंह और हरिहरन की गायक हंसी। सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं खामोश गाजी पूरी की लिखी गजल, फनकार और मौसीकी उस्ताद हैं जगजीत सिंह।

स्वामी जमशेदपुर की विविध भारती केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कशिश और इसमें

0: सुनियो और जिंदगियों की बुलंदियों के संग आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय कॉर्पोरेट डीटी है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प
1: और अब तो आप घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग
0: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001 02 पर

0: morning, my son Mark made the move. और किसी भी रेड इंडिया को सुधार देंगे और जरूर मुझसे पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
1: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पत्र नोट करें मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 1800।
0: आपको समर्थन देता हूँ। मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
2: Not just another day, but it's not just another day.

संघर्ष सदियों पुराना है और आज भी चला आ रहा है। ऐसे ही एक विद्रोह की जनक की आज सुनने की थी है आदिवासियों के भगवान बिरसा मुंडा का। साल 1900 में रांची के जेल में इनका निधन हो गया था। बिरसा मुंडा की उम्र भले ही छोटी थी लेकिन कम उम्र में ही वे आदिवासियों के भगवान बन गए थे। उन्हें हमारा शिक्षक नमन।

कार्यक्रम एक ही फिल्म से में के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे धड़क टू इतालिया इकबाल द्वारा निर्देशित सन 2025 में आई धर्मा प्रोडक्शन जी स्टूडियो और क्लाउड 9 पिक्चर्स द्वारा निर्मित

के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया,

दर्शन रावल अरिजीत सिंह जुबिन नौटियाल श्रेया घोषाल विनीता गांधी और विशाल मिश्रा ने अपनी आवाज दी है। फिल्म का संगीत शीर्षक को

भाईचार के खमीर को पूरी पानी से साजिश के साथ खाते हैं और ये केवल खूबसूरत दिल पर जुड़ने नहीं सोलर आने की बात है। प्राचीन समय के लिए हमारी आबो हवा हमारी जिंदगी के मौजूदा खस्ता बेगम हालात इसके दिखाई देने के लिए काफी है ना। हमारे थोड़े से हमने मांगे कुछ मकान जल्दी से मंजिल तक पहुंचाने वाली गाड़ियां मांगी तो मिलेगी हमें, लेकिन बदले में चौड़े रास्ते पेड़ों को खा गए, हमारे खेतों खलिहानों को निगल गए और सांस तलाश क्यों कर रहे हैं हम, शिकायत क्यों कर रहे हैं। इतनी व्यवस्था से हमारे देश में अनाज की किस्तें हो रही है, भोजन की थाली विकट लगने लगी है, जानवर खतरे में है, पेड़ चिंते जा रहे हैं और हमारी पृथ्वी की जो हाल है ये किसी दूसरे ग्रह की तारीफता में नहीं। मुंह की बात पर हम भूख से बच सकते हैं लेकिन सच से नहीं। इसी की बात है दोस्तों, पहले की ट्रैफिक सिस्टम था जो जीवन शैली की हमारी वही उत्पन्न कम से कम ऊर्जा खर्च करके गुजर बोकर करना ये हम

जिन्होंने संगीत क्रिया से फिल्मी दुनिया को सजाया संवारा और उनका नाम है विक्रम केतन। उनकी संगीत व चीजों की रोशनी फिल्म जगत और संगीत दुनिया को हमेशा रोशन करती रही है और रहेंगी भी। 9 जून 1912 को गोवा के केदार नाम की जगह पर जन्म हुआ था वसंती देसाई का। बचपन से ही संगीत में काफी रुचि थी। 1929 में बसंती देसाई महाराष्ट्र के कोल्हापुर आए। 1930 में उन्हें अभिनय का मौका भी मिला। उन्होंने गाने भी गाए लेकिन फिर उन्हें महसूस हुआ कि पार्श्व गायन की बजाय संगीतकार के रूप में उनका भविष्य अधिक सुरक्षित रहेगा। 1942 में प्रदर्शित फिल्म शोभा के जरिए बतौर संगीतकार वसंती देसाई ने अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन सफलता मिली वी शांताराम की फिल्म शकुंतला से और तब से वी शांताराम के प्रिय संगीतकार बन गए। उनकी लगभग सभी फिल्मों में वसंती देसाई

Drama, sports, 5-5, 3-0, 2-1, 7-1, 7-1, 8-1, 9-1, 9-1, 9-1, 9-1, 9-1, 9-1, 9-1, 9-1, 9-1, 9-1, 9-1, 9-1, 9-1, 9-1, 9-1, 9-1, 9-1, 9-1, 9-1, 9-1, 9-1, 9-1, 9-1, 9-1, 9-1, 9-1, 9-1, 9-1, 9-1, 9-1, 9-1, 9-1, 9-1, 9-1, 9-1, 9-1, 9-1, 9-1, 9-1, 9-1, 9-1, 9-1, 9-1, 9-1, 9-1, 9-1, 9-1, 9-1, 9-1, 9-1, 9-1, 9-1, 9-1, 9-1, 9-1, 9-1, 9-1, 9-1, 9-1, 9-1, 9-1, 9-1, 9-1, 9-1, 9-1, 9-1, 9-1, 9-1,

0: हम सब माँ नई दिल्ली अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे तो जरूर मुझसे
1: शुक्रिया माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए जो सुझाव देना चाहते हैं तो पसंद
0: आपको निमंत्रण देता हूँ मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।

दोस्तों ये दास्ता है एक ऐसे शायर की जिन्हें मकबूलियत से मिली मगर इसे देखने के लिए ये बहुत वक्त जिंदा रहने लगी। नाम है इनका असद गोपाली। इनका असल नाम था असदुल्ला खान। आज इनको याद कर लेते हैं। सन 1949 में असद गोपाली को फर्जी बंधुओं ने ढूंढ निकाला। वो फिल्में प्रोड्यूस किया करते थे और फिल्म रिलीज करने के लिए उन्होंने असद भोपाली को चुना। उन्हें बम्बई आने का न्योता दिया और 28 वर्ष की उम्र में असद भोपाली मुंबई पहुंचे। असद भोपाली उस दौर में अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे जब प्रतिस्पर्धा जो था वो सिर चढ़ कर गए। प्रतिस्पर्धा हो गई थी सिर चढ़कर और मजरूर सुल्तानपुरी शाही लुधियानवी राजेंद्र कृष्ण सैलेंद्र जैसे बड़े बड़े गीतकार जैसे गाने लिखे थे। फिर भी असद भोपाली ने 100 से अधिक फिल्मों में लगभग 400 गाने लिखे। लंबा सफर तय किया असद भोपाली ने। सन 1989 में आई एक फिल्म नाम था मैंने जान के असद पहली और जिसमें सिर्फ सलमान खान भाग्यश्री और सूरज बड़जातिया ही स्टार नहीं बने बल्कि असद भोपाली भी जिन्हें लोग लगभग बुला चुके थे वे भी लोगों को याद रह गए। उनके फिल्म के गाने बहुत प्रसिद्ध हुए

अभिनेत्री का जन्म भी है जिसने हिंदी सिनेमा में फैशन शब्द की परिभाषा ही बदल दी। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं बी टाउन की सबसे ग्रेसफुल, बेबाक और स्टाइलिश एक्ट्रेस सोनम कपूर आहूजा की। 9 जून 1985 को अनिल कपूर के घर चलने सोनम को देखकर अक्सर लोग यही सोचते हैं कि उन्हें सब कुछ फ्री में सजा हुआ मिला है। लेकिन दोस्तों, सच ये है कि सोनम ने इंडस्ट्री में अपनी पहचान खुद के दम पर बनाई। क्या आप जानते हैं कि फिल्मों में आने से पहले सोनम ने संजय लीला भंसाली की मशहूर फिल्म ब्लैक में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया था। जी हाँ, कैमरे के पीछे रहकर उन्होंने सिनेमा की बारीकियों को समझा और फिर साल 2007 में फिल्म सांवरिया से सिल्वर स्क्रीन पर कदम रखा। सांवरिया के बाद दिल्ली फिक्स के इस मासूम किरदार बिच्छू को भला कौन भूल सकता है, जो पुराने दिल्ली की छतों पर मस्त चली गाने का खेलते नजर आए और फिर फिल्म चांचा में भी उन्होंने खुद को साबित किया। लेकिन साल 2016 में आई फिल्म मिर्जा उनके करियर का सबसे बड़ा और अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बखूबी

में दावा किया गया है कि घर से काम करने वाले कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर हो रहा है। कुछ वर्क फ्रॉम होम करते थे और उनमें तनाव की शिकायतें बढ़ रही हैं। कई शोधों में ये सामने आया है कि घर से काम करने वाले लोग अपनी नौकरी से अधिक संतुष्टि जरूर व्यक्त करते हैं, लेकिन उनके बीच चिंता और अवसाद की तरह की होती है। कहीं भी कुछ होते थे, जब हम लोगों के साथ मिलते जुलते हैं तो ढेर सारी बातें भी होती है काम के अलावा, तो हमारा टेंशन भी कम हो जाता है। और वर्क फ्रॉम होम में ऐसा थोड़ी होता है कि हम

तो गया है लेकिन उमस है ही। हाँ, एक सीट में थोड़ी निजात ऐसे करीब मिली है तेज धूप से, तो अभी हम केवल जरूरी काम के लिए बाहर निकले।

डिग्री सेल्सियस से भी गिरने की संभावना है और आज सूर्यास्त होगा शाम 6:29 पर। कल का सूर्योदय सुबह 4:59 पर होगा और कुल मिला के बहुत सारे क्षेत्रों में दिन में धूप होने की संभावना है।

छाप मारी थी, जिसमें पंजाब के लुधियाना और जालंधर, उत्तर प्रदेश दिल्ली एनसीआर से शामिल है। निदेशालय ने बताया कि संकट ट्राई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े विशेषज्ञों और

सही है, ठीक है। जैसे अच्छे होने का हम हर प्रयास की को

0: प्रदीप की आवाज में प्रदीप के ही बोलों को वसंत देसाई ने जिसे संगीत बद्ध किया है। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो,

प्रिय धड़कन कार्यक्रम है यादों की महफिल। आइए लेते हैं यादों की महफिल में एक छोटा सा विराम, इसके बाद पुनः हाजिर होते हैं हम आपके बीच में बहुत सुंदर से नगमों को लेकर जिसे सजाए हैं हमने संगीतकार वसंत देसाई।

下来。

से मन्ना डे की आवाज में भरत व्यास के बोल और वसंत देसाई के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं फिल्म प्यार की प्यास से लता मंगेशकर, सरस महमूद की आवाज में भरत व्यास के बोल हैं और वसंत देसाई का है संगीत।

से यह गीत मोहम्मद रफी की आवाज में भरत व्यास के बोल और वसंत देसाई के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल में अगला गीत सम्राट पृथ्वीराज चौहान फिल्म से महेंद्र कपूर और साथियों की आवाजें हैं। अनंत श्याम ने इसे लिखा है और वसंत देसाई ने संगीत पर दिखाया है।

0: बचपन से उन्हें छिपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहाँ उनके घर उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेकिन के साथ साथ उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहायक चिराग रहते, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते, बाएं देखो तो शिवाजी चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो है जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमन जी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है

आदेश की श्रेणी भर पाई। यादों की महफिल कार्यक्रम में आइए सुनते हैं अगला गीत, जो कि है फिल्म यादें से लता मंगेशकर की आवाज।

के ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में इंतजार के बोल वसंत देसाई के संगीत के साथ आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल में जहाँ हम याद कर रहे हैं वसंत देसाई को उनके सुंदर गीतों के लिए गूंज उठी शहनाई फिल्म से यह गीत लता मंगेशकर की आवाज है भरत व्यास की है बोल और वसंत देसाई का है संगीत।

संगीत कार वसंत देसाई को आज उनका जन्मदिवस है और उनको याद करते हुए हमने उनके द्वारा संगीतबद्ध किए गए गीत

सुनीली धड़कन में और स्वागत है कार्यक्रम सुनीला सफर में। अभी सुनीला सफर शुरू हो रहा है और आज की जो इबारत है वो हम आपके बीच में पढ़ना चाहते हैं।

के पहले आपको ये पहेली सुनाते जाएंगे। हम कुछ पहेलियां दे रहे हैं, उसके साथ आज के शब्दों को ढूंढना है और बताना है, और पहेली प्रत्येक गीत के पहले आपके बीच में रखी जाएगी। और अभी अब हम जो चल रहे हैं इस इबारत के साथ में, हमने एक और बात आपसे कही है कि अगर आपके पास में कुछ पहेलियां हैं जो आप हमसे साझा करना चाहते हैं तो जरूर करें। हो सकता है उससे जुड़ा हुआ कोई गीत हम आपको सुनवा दें कार्यक्रम के होने होने तक। तो हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज का सुरीला सफर, आज के सुरीला सफर को शब्द संगीत पहेली का रूप दिया गया है। हम श्रोताओं को दिमागी कसरत और कुछ नवीन प्रयोग अच्छा लगा और सराहनीय थी। धन्यवाद कुछ नई सोच के लिए। और उन्होंने सारे उत्तर दिए हैं एक के बाद एक। इसके साथ ही हमारे एक और श्रोता ने लिखा कि कार्यक्रमों में विविधता ही विविध भारती की पहचान है। पहेलियों का सुंदर प्रयोग कुछ अलग हटकर करने की प्रामाणिकता है। समरसता अक्सर मनोरंजन बाधित होती है, अतः यह विविधता स्वागत योग्य है। और इसके साथ ही उन्होंने भी हर पहेली का उत्तर दिया है। इसके साथ ही जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है एक और संदेश। हमारे मित्र लिखते हैं कि विविध भारती के सुरीले सफर में आज पहेलियां पूछते हैं। कभी कक्षा के काली समय में दो चार लोग यह खेल खेला करते थे, या शादी के फंक्शन में रिश्तेदारों का जमघट होता था तो लोग मनोरंजन के लिए पहेलियां बुझाने का काम करते थे और सही जवाब पर ठहाके लगाते थे। हमारे एक श्रोता ने तो बड़ी गंभीर बात लिखी है। वो लिखते हैं विश्व में दैविक पौराणिक प्राकृतिक और लोक जीवन के प्रसंग प्रचुर मात्रा में देखने सुनने को मिलते हैं। पहेलियां ज्ञान वर्धक और स्मरण शक्ति बढ़ाने के उद्देश्य से कही और सीखी जाती है। पहेलियां प्रायः व्यंजना शैली में रची जाती है। इनकी भाषा में विशिष्ट भंगिमा होती है, रचना में बाकपन होता है। इस कारण इसका अर्थ लगाने में दिमागी कसरत तो होती है, भाषा भी निखरती है और विषय वस्तु के प्रति जिज्ञासा और भाषिक जवाबी भी बढ़ती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और कुछ तो कह रहे हैं कि वो अपने बचपन को याद कर रहे हैं इन पहेलियों के साथ में, तो वह भी बहुत अच्छी बात है। हमारे श्रोता ने कहा है कि पहेलियां दिमाग की कसरत नहीं बल्कि मानवीय संवेदनाओं, धैर्य और दृष्टिकोण का एक खूबसूरत दर्पण है। ये दिखाती है कि जीवन की उलझन में गहरा अर्थ छिपा है। यह जीवन के उस फलसफे को दर्शाती है जहाँ हर सवाल का जवाब हमारे अपने भीतर मौजूद होता है और शब्दों और छवियों का यह खेल हमें अपनों के साथ जोड़ता है, संवाद बढ़ाता है और कठिन परिस्थितियों में मुस्कुराते हुए आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। शब्दों का कोई मनमोहक खेल हर पहेली हमें बेहतर और समझदार बनाती है। तो चलिए हम चल रहे हैं उन्हीं पहेलियों की तरफ। हमारे श्रोता ने एक और बात लिखी है कि ये पहेली वाला विषय नहीं है, उन्होंने अपने किसी दूसरे पहेली विषय से जोड़कर लिखा है। तब हम जब आज गीत हम सुनाएंगे तब उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम चलते हैं की तरफ और ये पहला गीत जो है वो बड़ा सुंदर सा है। आपको पहचानना है कि इसके ये जो गायक कलाकार है वो कौन है, और अगर आपके मन में कोई पहेली है तो उस पहेली को हम तक पहुँचाना है और उस पहेली का उत्तर भी पहुँचाइएगा। हमारे श्रोताओं जितने समझदार नहीं है तो हम चाहते हैं आप उत्तर तक पहुँचाएं,

सेवा बहुत है। उसके बाद समय पर बीच में पानी दे दी कभी, और हुआ चलते हैं जब आम का मंजर निकलने का समय होता है ना, इस बार आम

और एक बढ़िया से गीत में हमने आपसे पूछा था कि बताइएगा इसके बारे में, और आपने बड़े अच्छे से उत्तर हमें दिए हैं। हमारे श्रोताओं के उत्तर सुनते सुनते बड़ा आनंद आ रहा है, पढ़ते पढ़ते बड़ा मजा आ रहा है। बहुत सारी पहेलियाँ हमारे बीच में आ रही हैं और उन पहेलियों के साथ बड़े प्यारे जज्बात भी आ रहे हैं। और हम ये जो गीत सुन रहे थे वह आज और कल, आज और कल फिल्म से सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज़ में, हसरत जयपुरी के पोल, और जो प्रश्न है वो शंकर जयकिशन ने इसके संगीत पर भी किया है। इसके साथ ही हमने आपसे पूछा था तो हम आपका उत्तर काले रंग के पत्ता उन्होंने कहा है, चलिए दूसरे उत्तर सही है या नहीं आप अवश्य देख लीजिए। अब हम चल रहे हैं अगले गीत की तरफ, लेकिन उस गीत के पहले हमारे श्रोता ने बहुत अच्छे से लिखा है कि फिल्म कल आज और कल का सदाबहार गीत भंवरे की गुंजन हसरत जयपुरी के द्वारा रचित किशोर कुमार द्वारा गाया गया एक मधुर रोमांटिक गीत। गाने बज जाते हैं इस बात से हमें बड़ी खुशी होती है, इसका भी आपको बहुत धन्यवाद। हमारे श्रोता ने लिखा है दो लड़के लड़ते जाएं उनका खेल बढ़ते जाए, इसका उत्तर उन्होंने बताया स्वेटर बुनने वाली दो सलाइयाँ। हाँ, माँ जब स्वेटर बुनती थी तो कुछ ऐसे ही बुनती थी। इसके साथ ही हमारे श्रोता ने बड़े अच्छे से उसका उत्तर भी दिया है, हमने जो आपसे पूछा था। हमारे एक और श्रोता ने बोला है कि एक गुफा में बत्ती शोर हमेशा करते आपस में शोर, बताइए पहली का उत्तर। हमारे एक और श्रोता पहले ही बता चुके हैं बत्ती शोर होते हैं हमारे दांत, इसका उत्तर हमको पता है। इसके साथ ही हम आपसे कह रहे हैं कि आप इसका उत्तर सही बता दें, क्योंकि हम तो बड़े अंधिज्ञ व्यक्तित्व हैं, तो अगर आप बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके पास हमारे पता लिखे वो कौन है जिसकी पर्ची बात है, ये भी बढ़िया बात आपने कही है। इसके साथ जब हम आगे बढ़े तो हमारे पता ने लिखा है कि पहले सूचना और समझना एक दिमागी विकल्प है, आज के समय में हर इंसान पहेलियों में उलझा हुआ है। बहुत बढ़िया। और एक श्रोता की एक संवेदना हम आपके साथ साझा नहीं कर पाए जो पिछले गीत के लिए उन्होंने की थी कि हजारों गम हो मेरी जिंदगी में तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जहाँ माँ साथ हो वहाँ कोई भी दुख ठहर नहीं सकता, लेकिन जो माँ पे तो क्या ही कम पड़ जाए, वो एक हस्ती है जिसके आगे सारा जहान दे सकते हैं। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। हमारे श्रोता ने एक बढ़िया सी पहली लिखी है कि वो कौन है जो पूरे गाँव में घूमती है पर मंदिर नहीं जाती, उन्होंने लिखा चरण पादुका। कटोरी के अंदर कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा, कौन होता है बताइएगा जरूर। इस पहेली का अर्थ आपको बताना है, उत्तर बताना है, बचपन की पहेली है जो हम सुनते आए हैं, कटोरी के अंदर कटोरा बेटा बाप से भी गोरा, इस पहेली का उत्तर आप बताइए। और अब हम चल रहे हैं अगले गीत की तरफ, ये गीत के साथ इसकी पहेली भी हम आपको सुनवा देते हैं। तो ये पहेली है कि नन्ही सी मैं उड़ती जाऊं चीखी करके गीत सुनाऊं, पेड़ों पर मैं घर बनाती पूछो कौन कहलाती, और इसका उत्तर है चिड़िया। चिड़िया पर मैं आपको ये सुंदर सा गीत सुनवा रही हूँ, और इसके पहले मैंने भंवरे पर आपको गीत सुनवाया। हम मान लें तो मधुमक्खियाँ और जो भी फूलों का रस चखती हैं उन सबको अगर इसमें हम जोड़ लें तो ये सब गीत खत्म हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। उनकी रक्षा कैसे कर सकते हैं विचार कीजिएगा, और गर्मियों के दिन है

फिल्म अब भी दूर नहीं से है, हसरत जयपुरी के बोल है, दत्तराम का संगीत है और हमने पूछा था कि आवाज किस गायक की है, तो आप सबने बिल्कुल सही उत्तर दिया, मोहम्मद रफी की आवाज है। और ये प्यारा सा गीत हम सुन रहे हैं, गीत के साथ एक शिक्षा तो मिलती है कि

0: है, ये आपकी बात को भी हम मान लेते हैं। एक पहेली है जो हम आपको सौंप रहे हैं और हमने इससे पहले आपको सौंपी थी कि कटोरे में कटोरा बेटा बाप से भी जोड़ा, तो आपने सही उत्तर दिया नारियल। अब एक पहेली सौंप कर मैं बस आपको संदेश सुनाने वाली हूँ। पहेली है, हरी थी मन भरी थी मोतियों से भरी थी, राजा जी के खेत में विशाला ओढ़े खड़ी थी। हरी थी मन भरी थी मोतियों से भरी थी, राजा जी के खेत में विशाला ओढ़े खड़ी थी। इसका एक हिंट दे देती हूँ, अरे बड़े शौक से इसे कोयले पर सेक कर उसमें नींबू और दही लगाकर नमक लगाकर हम बड़े चाव से खाते हैं। बताइएगा, तब तक सुनिए ये संदेश। वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली, बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांक हमने कक्षा 6 में पढ़ी तो मैं

0: से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले और एक झलक में देख लूं कि जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
1: लेकिन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
0: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते, बाएं देखो तो शिवाजी चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
1: वो है जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमजी।
0: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुट्टी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, सिर्फ कुशल है।
1: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम है सुरीला सफर। और सुरीला सफर कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं बहुत सारी पहेलियाँ और अगली पहेली आपको सौंपने से पहले इसी पहेली जो हमने लूनी बुझी थी उस पहेली का हरी थी मंदरी थी। इस पहेली का जो उत्तर हमने आपसे पूछा था उसका उत्तर आपने दिया है भुट्टा। बिल्कुल सही बताया आपने। और इसके साथ ही हम कई सारे और प्रश्नों के साथ चल रहे हैं। हमारे एक श्रोता ने प्रश्न दिया, मुझे पहेली बस का उत्तर पता नहीं होता है तो मैं पहेली बताती हूँ, मेरी थोड़ी सी चीटिंग कर लेती हूँ। चलिए, हमारे एक श्रोता ने लिखा है, जहाँ जितने ज्यादा पेड़ पौधे फूल होते हैं वहाँ चिड़िया पंछी भवरे तितलियाँ दिखते हैं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाना सारी समस्याओं बहुत सारी समस्याओं का हल है। आपने बहुत अच्छा हल बताया और हम सबको ये हल मानना चाहिए। और अभी मौसम भी आ रहा है, जैसे ही बरसात का मौसम आता है ऐसा कहा जाता है कि बरसात के मौसम के कुछ 10-15 दिन पहले गड्ढा खोद देना चाहिए ताकि जमीन जो है वो सूख जाए, एक तेज रहित हो जाए। और उसके बाद जब वह गड्ढा सूख जाता है 10-15 दिन में तो फिर उसमें पेड़ लगा देना चाहिए और पानी डाल देना चाहिए। और धीरे धीरे बारिश आएगी, बरसात स्वयं उसको पानी देती रहेगी और 4 महीने में वो हरा भरा हो जाएगा। तो अभी ये काम कर सकते हैं, मौसम आ गया है, गड्ढा खोदने की शुरुआत कर दीजिए। हमारी दुकान ने लिखा है, हवा में उड़कर आती हूँ, बिना छुए देखो छू जाती हूँ, मेरे हर सुर में कहानी है, विविध भारती की मैं रानी हूँ, बताओ मैं कौन हूँ। और उन्होंने उत्तर दिया है, विविध भारती राष्ट्रीय सेवा का सुरीला सफर। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। हमारे श्रोता लिखते हैं, बचपन में हम सब छुट्टियों में दादी के घर जाते थे तो रात को सब अपने बिस्तर पे लेते पहेलियाँ बिछा करते थे और हमारे बड़े भी हिस्सा लेते थे। और उनमें से एक पहेली, पंछी उड़ता आकाश में मगर रहता कहाँ। हाँ, इसका उत्तर उन्होंने बहुत अच्छे से दिया, पानी में रहता है मगर, पंछी उड़ता आकाश में मगर रहता कहाँ, तो मगर रहता है पानी में। हमारे श्रोता लिखते हैं कि खामोशी और मौन दोनों ही, एक श्रोता ने पूछा कि ऐसा आपने इसका उत्तर दे दिया, चलिए बहुत अच्छी बात है। उन्होंने उत्तर से पूछा था कि बोलते ही क्या टूट जाता है, तो उन्होंने कहा खामोशी और मौन टूट जाता है। बिल्कुल सही। चलिए अब हम चल रहे हैं कि अब बड़ी खूबसूरती के साथ में अगले गीत की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और अगली जो इबारत में से जो सहेली है वो हम आपको सौंप रहे हैं, ईंटों पत्थरों का तन मेरा, पर यादों से सजता मन मेरा, हंसी आंसू अब सपनों का स्वर, बताओ कौन है मैं। ईंटों पत्थरों का तन मेरा, पर यादों से सजता मन मेरा, हंसी आंसू सपनों का स्वर, बताओ कौन है मैं। और इसका उत्तर है घर। और सुनते हैं घर का गीत, बस बता दीजिए कौन सी फिल्म का गाना है। और इसके साथ ही आपकी जो पहेलियों के किस्से हैं या किसी ने आपसे कोई पहेली पूछी है या आपके परिवार में सबसे या

लेकिन चित्रा सिंह की आवाज में जावेद के बोल और जावेद अख्तर के बोलों से कुलदीप सिंह के संगीत के साथ। और हमने आपसे पूछा कि गायक कलाकार कौन है, तो आपने सही उत्तर दिया जगजीत सिंह और चित्रा सिंह। बिल्कुल सही उत्तर आपने यहाँ पर दिया है। और इसके साथ ही अब हम चल रहे हैं अगले गीत की तरफ। और अगले गीत की तरफ बढ़ने से पहले जो आपने हमें बहुत सारी बातें बताई हैं, सुझाई हैं, संदेश भेजे हैं, तो हमें आपको सुनवाने ही हैं। तो हमारे श्रोताओं ने इसके बारे में बहुत अच्छी बात लिखी है। दीप्ति नवल पारिशेख, जगजीत सिंह, चित्रा सिंह, फिल्म का साथ बहुत बढ़िया। हमारे श्रोता लिखते हैं, घर वो जगह है जहाँ आकर हमें सबसे ज्यादा सुकून और शांति मिलती है। तो ऐसे घर यूज करते हैं और घर चाहे बड़ा हो या छोटा, हमें

खूबसूरत बलवान कहाँ कमाता है, विचार क्या है, ये देखना चाहिए। बिल्कुल सही संदेश आपने दिया। और हमारे श्रोता ने हमने भुट्टे के बारे में पूछा था, उसे छल्ली भी कहते हैं, मक्की भी कहते हैं। अरे वाह, इतने सारे नाम है भुट्टे के, हमें भी पता पड़ गए। हमारे श्रोता लिखते हैं कि पिछले कुछ वर्षों से चिड़िया या गौरैया को कम देखा जा रहा है हमारे घर में। चिड़िया का एक जोड़ा जहाँ हम दाना डालते हैं आता है पिछले कुछ महीनों है चड्डे पर, और आज ही चिड़िया का जोड़ा उसका मुआयना कर संख्या बढ़ जाए, फिर तो उनकी चहचहाट से मेरी आँख खुले और मेरा दिल दिल खुशनुमा हो जाए। कितनी बढ़िया बात है। हमारी श्रोता लिखते हैं कि बिहार में जब लड़की की शादी होती है तो मायके में ही लड़का लड़की कोहबर में बैठने के लिए लाया जाता है, तब घर की तालियां दरवाजे से को घेरती हैं और दूल्हे राजा से गाने की कुछ लाइनें या कुछ पहेलियां पूछती हैं। पहले तो दूल्हे राजा गड़बड़ाते हैं, गाने की दो लाइन गा देते हैं, फिर उन्हें शगुन भी देना पड़ता है। ये सब दो मंजिला घर बन जाता था तो बहुत खुश हो जाते थे, और वो दो मंजिला घर भी हमारे लिए स्वर्ग से कम नहीं होता था, और टूट भी जाता था तो हम फिर से बनाते थे, टूटते नहीं थे, है ना। अब हमारे श्रोता ने लिखा है कि जितना पास आए उतना कम दिखाई दे, और उसका उत्तर उन्होंने बताया अंधेरा। आहा क्या बात है। एक बचपन वाली पहेली भी हमारे पास में आई है। एक छड़ी एक पड़ी एक टमाटर नाच रही, बताओ कौन, और उसका उत्तर है रोटी, जिसके बिना हमारा जीवन नहीं चलता। ये हमारे श्रोताओं ने उत्तर दिए हैं, और इसके साथ ही हम चलते हैं हमारी अगली पहेली की तरफ। और वो जो पहेली है बड़ी सुंदर सी है, और इन पहेलियों के स्मृति दौर में हम चल रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है, क्योंकि हम अपना कहीं ना कहीं बचपन या हम अपने वो दिन जी रहे हैं जो हमने आज की तकनीकी युग में कहीं खो दिए हैं। तो चलिए हम अगली पहेली की तरफ बढ़ते हैं, और हमने हमारी जो इबारत है उस इबारत में अगली पहेली लिखी है। दिन में रहता काम न आता, दिन में रहता काम में आता, बाजार जाकर चीज लाता, सबको मेरी होती चाह है, बताओ मेरा नाम। और इसका मतलब पैसा या रुपया या धन, बिल्कुल सबको जरूर होता है, इसके अलावा इसके बिना कुछ काम होता नहीं है। लेकिन जब यही पैसा लालच बन जाता है तो इस लालच के कारण बहुत सारा नुकसान भी होता है। तो पैसा जो है वह एक सोच और समझ के साथ आना चाहिए, और सोच और समझ के साथ संभालना भी चाहिए, है ना। चलिए मैं आपको अगला गीत सौंप रही हूँ, आप बताइएगा कि आपको लालच आया था कभी पैसा देखकर, उम्र में तो आया होगा,

कि गायक कलाकार कौन है, कैसे कितनी सर्दियाँ हैं, परंतु हम 20 साल जावेद अख्तर के हैं और राकेश रोशन ने भी संगीत बज किया है और हमारे श्रोताओं ने जो उत्तर दिया वो बिल्कुल सही दिया कि कुमार सानू की इस आवाज़ को हम सुन रहे हैं। और हमने आपसे पूछा था कि आप बताइए कि आपको लालच किस चीज़ का है, हमारी श्रोता लिखती है मुझे तो पति के पॉकेट से मिलने वाले पैसे का लालच आज भी है, जब भी उनके कपड़े धोती हूँ मेरी नज़र पॉकेट पे होती है, कुछ सिक्के भी मिल जाए तो खुशी होती है, वो नोटों की गड्डी से भी नहीं मिलती। बिल्कुल सही है, पर ये तो हमारा अधिकार में भी आता है ना जी। और एक और श्रोता ने लिखा है कि एक थाल मोतियों से भरा, सबके सिर पर ओढ़ा धरा, चारों ओर वह थाली भरे, मोती उस पर एक ना गिरे, इसका उत्तर मुझे पता है। आपने उत्तर नहीं दिया था लेकिन मुझे पता है आसमान। और मैं आपको अच्छी पहेली सुनाने से पहले एक पहेली दे रही हूँ, मैं हरी मेरे बच्चे काले, मुझे छोड़ मेरे बच्चे, मैं हरी मेरे बच्चे काले है ना, और मुझे छोड़ मेरे बच्चे काले, बताइएगा ये कौन है। मैं हरी हूँ मेरे बच्चे काले हैं, मुझे छोड़ दे और मेरे बच्चों को काले, ये उत्तर है, इसका उत्तर आपको देना है। और इसके साथ ही अगली पहेली हम आपके बीच में पढ़ने वाले हैं और अगली पहेली के साथ में जो अगला गीत है उस अगले गीत के गायक कलाकार का नाम भी आप बता दीजिएगा। हम आपके बीच में बस पहेली को पढ़ देते हैं। नखून का रिश्ता है नजर का नाम, फिर भी रहता हरदम साथ, हंसाए खिलाए दुखी बातें, बताओ कौन है इतना खास, और वो होता है दोस्त। चलिए इस दोस्ती के नाम

को सही पहचाना मोहम्मद रफी की आवाज तक। मैं भाई अजीत और आपने बहुत सारे संदेश भेजे हैं, उन सब संदेशों को हम पढ़ देते हैं जल्दी से। हमारे श्रोताओं ने बहुत सारे, पांच भाई एक साथ भूसा मारता है भात भी खाता है, पांच उसके साथ हैं दोनों मिलकर करते हैं नमस्कार, बिल्कुल सही, और दोनों हाथ का पंजा इसका इन्होंने कहा है। इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि ये जो मैं भी भूखा ना रहूं, साधना भूखा जाइए इनकी भावना है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं जब भी लॉटरी वॉटरी की टिकट कटती है तो उनको लगता है कि विदेश यात्रा मिल जाए तो बड़ा मजा आएगा। देखिए लालच तो सबको होता है, पर ये लालच की कोई बहुत थोड़ी सी भावनाएं होती है, भावनाओं को अपन देख सकते हैं। अब मैं अंतिम पहली की तरफ जा रही हूँ। सागर जिसके चरण पखारे, हिमालय जिसका ताज कहा, अनेक भाषाएं अनेक रंग, बताओ वह कौन सा कहलाए, और हमारे देश का नाम है भारत। भारत भारत ये अद्भुत देश जो बहुत विशाल है, बहुत सुंदर है, और जिसका ताज जिसके सर पर मुकुट हिमालय का, और इसके चरण प्रतिदिन पखारे जाते हैं मंडल से, ऐसा देश वहाँ के अलावा और है। देश में आपको सौंपनी हो और बताइएगा कि जिसके गायक कलाकार कौन है और पहले वाला कार्यक्रम आपको कैसा लगा, जरूर बताइएगा, बड़ा मजा।

से आप बहुत छोटी छोटी चीजों में मिस कर सकते थे। फुर्सत के क्षणों में बोलना, बतियाना, खाना पीना, हंसी झोली, बातें करना, खुद पर देर तक बातें करना, चांद सितारों को निहारना, त्योहारों की हलचल, इन सब में हमारे चेहरे पर खुशी और मुस्कान खिले रहते थे। साधन उस समय सीमित थे, हमारे मन में खुशी कम होती जा रही है, लेकिन फुर्सत नहीं है। जब हम खुश होते हैं तो मन में जैसे तरंगे आते हैं, मन में ऊर्जा पैदा होती है। जब हम खुश होते हैं तो हमारा मन उड़ जाता है मुक्त आकाश की ओर,

बहुत तेज हो गई है, हर कोई व्यस्त है, सबके पास मोबाइल है, सोशल मीडिया का जमाना है। सोशल मीडिया एक दोधारी तलवार की तरह हमें बहुत सारी उपलब्धियां तो देता है, तो दूसरी ओर हमारे अपने मन की दूरी बढ़ती जा रही है। अपेक्षाओं और आकांक्षाओं की आगे बढ़ने की रेस मन को

बात यह है कि हम घर बाहर समाज और अपने कार्यस्थल पर अपनी मुस्कान और अपनापन जरूर बांटें, अपनी संवेदनाएं बाहर निकालें, सबका आदर और सम्मान करें। अपनी संवेदनाओं को कभी कुंठित नहीं होने देना चाहिए। किसी की बात ध्यान से सुन लेना, किसी के सुख दुख को बांट लेना, सहयोग के दो शब्द

खुश होते हैं तब पूरा ब्रह्मांड खुश होता है। पेड़ पौधे खुशी से झूमते नजर आते हैं। खुश रहने के नियम बताए गए हैं। सकारात्मक सोच, स्वास्थ्य का ध्यान, दूसरों से तुलना न करना, वर्तमान में जीना, माफ करना और संतोष करना। इन नियमों का पालन मानसिक

सुरक्षा और किसानों के सशक्तिकरण के लिए इंदौर में 5 दिन के वृत्त कृषि मंत्रियों की बैठक शुरू। रणनीतिक रूप से सड़क परियोजना दो जिला सुरंग का अंतिम चरण पूरा। कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे। राष्ट्रव्यापी समारोह आज से शुरू होंगे। कर्नाटक, केरल और माही में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान में लू का अनुमान। और पुरुष क्रिकेट में

साक्षी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ नागरिकों की राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित होकर सरकार विश्वास, विकास और जनता के समर्पित है। श्री मोदी ने कहा पिछले 12 वर्षों में सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत से प्रेरित निरंतर प्रयासों के माध्यम से देश एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत बनने की

तथा वर्षों में सरकार ने आम नागरिकों के लिए पासपोर्ट जारी करने और दस्तावेजों के सत्यापन को सुगम बनाया है और नागरिकों को पूरा सहयोग प्रदान किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन वर्ष 2024 को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। अपने तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार, सामाजिक कल्याण, रोजगार सृजन और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को मजबूत करने जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रही है। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्ध

0: उनसे जो कि समूह पाकिस्तान में है।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है।

Medina Sorong juga akan aktif berkontribusi pada मौसम चंपा के स्थापित होने की संभावना बढ़ गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रिमोट बटन दबाकर लद्दाख के मिनमर्ग में दो जिला सुरंग के पूर्वी प्रवेश द्वार के पास विस्फोट किया और इसे कश्मीर तथा लद्दाख

उत्तर प्रदेश में बरेली तथा दिल्ली एनसीआर क्षेत्र शामिल है। निदेशालय ने बताया कि हमसन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के आवासीय तथा व्यावसायिक कार्यालय परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया। ये मामला आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़ा हुआ है।

जम्मू कश्मीर के शीर्ष अधिकारियों ने श्री अमरनाथ जी यात्रा के सुचारू और सफल संचालन के लिए व्यवस्थाओं की समीक्षा की। जम्मू के संभागीय आयुक्त रमेश कुमार और जम्मू जोन के पुलिस महानिरीक्षक भीम सिंह ने कल रामबन का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

的身材，欢迎来领

0: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ एक मजबूत और शक्तिशाली समझौते के बेहद करीब है। उन्होंने कहा कि हालिया सीमा पार मिसाइल हमलों के बावजूद द्विपक्षीय वार्ता अभी भी आगे बढ़ रही है।
1: अमेरिका एक मजबूत

भाजपा के पूर्व उपमंत्री सरना गुणवर्धना को भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी ठहराया है। ये आरोप 2006 में विकास लॉटरी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान परिवार से संबंधित है। ये फैसला उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मोहम्मद मिहारी ने भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने वाले आयोग द्वारा दायर एक मामले में सुनाया है। फिलीपींस में कल दक्षिणी क्षेत्र के तट के पास आए 7.8 तीव्रता के भूकंप से मृतकों की संख्या भूकंप में 500 से अधिक लोग घायल हुए हैं जबकि 4 लोग लापता हैं। भूकंप का केंद्र फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप के तट से दूर था। भूकंप के कारण 20,000 से अधिक लोग दूर था। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.4% की बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 267 अंक बढ़कर 76,798 और निफ्टी 86 अंक बढ़कर 1,209 पर था। पूरा देश आज महान स्वतंत्रता सेनानी और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की

Arrivava a testa, la testa era una semplice.

प्रदेश जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, विदर्भ तथा पश्चिमी राजस्थान में लू चलने की आशंका है। क्रिकेट में आज भारत ए और श्रीलंका ए के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए की टीम ने 278 रनों का लक्ष्य दिया है। जो मैच श्रीलंका के रणधीर गांगुली इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारतीय टीम ने 50 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 277 रन बनाए हैं। भारत के लिए ऋतुराज गायकवाड़ के शतक और तिलक वर्मा के 150 रनों की साझेदारी ने भारत को महत्वपूर्ण भूमिका दिलाने की मदद की है। मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया। भारत ने संयुक्त राष्ट्रों में पाकिस्तान को नफरत की फैक्ट्री बताया। खाद्य सुरक्षा और किसानों के सशक्तिकरण के लिए इंदौर में 5 दिन के वृत्त मंत्रियों की बैठक शुरू। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण पूरा। कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे। राष्ट्रव्यापी समारोह

निकेतन से है गीत मोहम्मद रफी की आवाज में प्रेम धवन के बोल और चित्रगुप्त के संगीत के साथ कार्यक्रम है सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं दास फिल्म से यह गीत लता मंगेशकर की आवाज है, शैलेंद्र की बोल है, शंकर जयकिशन का है संगीत।

0: पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छुपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहाँ उनके किनारे उनका घर था, जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले और एक झलक में देख लूं कि जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते, बाएं देखो तो शिवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो है जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमजी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुट्टी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, सिर्फ कुशल है।
0: आपके मेहमान 10 जून शाम 4

सुनते हैं, हम सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में।

देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम है सदाबहार नगमे। मॉडर्न गर्ल मॉडर्न गर्ल इस फिल्म का यह गीत सुमन कल्याणपुर और मुकेश की आवाजों में गुलशन बागरा के बोल और रवि के संगीत के साथ आइए सुनते हैं।

होता है। फिल्म का यह गीत हम सुन रहे थे लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाज में, अक्षय जयपुरी के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नन्हे का अगला गीत, जो कि है घराना फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज, शकील बदायूनी के बोल और रवि का है संगीत।

जयपुर के विविध भारती केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम के 101.8 मेगाहर्ट्ज पर दिन के 2:55 मिनट होने को है। इसी पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से।

0: को सम्मान देना, उनको याद रखना। उस व्यक्ति में जरूर कुछ ऐसे गुण रहे हैं, ऐसा उन्होंने इतिहास रचा है, जिनको लोग सदियों से याद करते आ रहे हैं।
1: कोयला एवं खान राज मंत्री सुरजीत समेत के आज क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे, जिसमें 5:30 बजे बिस्कुपुर के श्यामल भवन में 12 साल विश्वास के जन कल्याण के विषय पर प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करेंगे। मौके पर सांसद विजय वरण महतो भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत आज 10 वर्ष पूरे हो गए। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षण वर्षीय गर्भावस्थाओं का शीघ्र प्रसंस्करण और त्वरित प्रबंधन कर मातृ और नवजात मृत क्षेत्र को पहुँचना है। इस कार्यक्रम में देश भर में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने में मदद की है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए सभी 188 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को

0: reflexión, esta reunión, o a nuestro hijo tampoco, entonces vamos acá, vamos acá. Ahora, mira aquí, अपने सभी जो भी कृष्णियाँ हैं जो भी सफा हैं सभी सभी को सभी श्रोताओं को और सुनते हुए आपको नमस्कार आपकी नमस्कार हमारे सभी सुनने वाले वाली बेटा जी से इंतजार करते हैं अपने पसंदीदा कार्यक्रम का और बहुत सारे श्रोता हैं जो फेसबुक पेज से जुड़े हैं लेकिन कुछ श्रोता हैं जो नहीं जुड़े हैं जी तो आज किन विषयों पर हम बात करेंगे ये बता देते हैं कि गर्मियों का समय है और पानी का बड़ा महत्व होता है बहुत सारे लोग अनायास ही बहुत सारा पानी खर्च कर देते हैं तो इस तरह से इस पानी की बचत बहुत महत्वपूर्ण है करनी चाहिए क्यों जरूरी है इन सब बातों पर हम
1: बिल्कुल और मौसम कोई भी हो पानी तो हमें चाहिए चाहिए चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो और पानी के बारे में आप मुझे बताइए आप किस तरीके से पानी की बचत करते हैं आपको और लोगों को किस तरह से जागरूक करते हैं इस चीज़ के लिए और साथ ही आज हम बात करेंगे सखी विशेष के अंतर्गत जिम

अपने मल्टीपल की बातों में करेंगे, बहाना ऐसा कौन सा जो अक्सर काम कर जाता है। बिल्कुल, ये बात तो बड़ी कहते हैं कि एक रोचक भी हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं अपने आप को बचाने के लिए या सुरक्षित करने के लिए कोई ना कोई बहाना उनके पास में तैयार हो जाता है, और बहुत सारे लोग बहाना तो बनाते हैं लेकिन पकड़े जाते हैं। हाँ, अपने बोल रहे बहाना बनाते हैं, लेकिन आप कैसे कौन सा बहाना बनाते हैं जो कभी पकड़ा नहीं जाता है, और कौन सा ऐसा बहाना है जो अक्सर काम आता है आपके आपको सुरक्षित रखने के लिए। बहाने क्यों बनाते हैं, किस तरह बनाते हैं, ये सब चीजों के बारे में ढेर सारी बातें होंगी। और मुहावरे की आज हम एक बात करते हैं, तो आज हमने जो मुहावरा सुना है वो है आम के आम गुठलियों के दाम। यानी आम का मौसम है ना, आम खाए जा रहे हैं। हाँ, तो दोहरा जो फायदा है उसकी बात होगी, लेकिन भाई अब आम के आम गुठलियों के दाम से जानकारी होगी, मनोरंजन होगा और हिट भी होंगे। और संचय जी, मैं ये कहूँगी अपने जो भी श्रोता है, सखियाँ हैं, जो भी सखा है, कि आप इसमें आम के आम जो गुठलियों के दाम मुहावरा है ना, खाली इसका अर्थ ही मत लिख के दे दीजिए, क्योंकि अर्थ तो चलिए हमने समझा, आप थोड़ा सा उसके बारे में और रोचक बना के भेजिए उसको। बिल्कुल, सुनने से ही पता लगता है कि दोहरे फायदे की बात हो रही है, तो उसका अर्थ तो सही जानते हैं, लेकिन आपके जीवन में दोहरा फायदा किस तरह हुआ, मतलब आम क्या गुठलियों के दाम, आपने किसी को ऐसा किसी मतलब दोहरा फायदा पहुँचाया हो तो वो भी बताइए। तो भाई कार्यक्रम में कैसे होते हैं आम क्या गुठलियों के दाम, ये सुनने से।

0: Yeah, they never really like it.
1: Oh, I love it. I'm amazing with him. I'm
0: just a little bit. और अभी हम जो सेगमेंट सबसे पहले लेने वाले हैं वो है हमारे सखी विकी सखी और अपनी सखी विकी के बारे में कुछ बातें बता
1: हम बात करेंगे जीनिया पर्सी मास्टर के बारे में।
0: तो जीनिया पर्सी मास्टर भारत की जानी मानी महिला उद्यमी है जो बिजनेस और फाइनेंशियल रणनीतिकार है और जीनिया एक व्यावसायिक परिवार से आती है। उनके परिवार का लॉजिस्टिक्स और बिजनेस क्षेत्र में लंबे समय से संबंध रहा है।
1: जीनिया पर्सी ने स्विट्जरलैंड की प्रसिद्ध लियोन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन से हॉस्पिटैलिटी फाइनेंस और रेवेन्यू मैनेजमेंट में पढ़ाई की। इसके अलावा उन्होंने लंदन में सिडनी विलियम इंस्टीट्यूट से इवेंट मैनेजमेंट में डिप्लोमा भी लिया हुआ है और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने दुबई और अन्य स्थानों पर होटल इंडस्ट्री में काम किया। उन्होंने की ओपनिंग टीमों में भी काम किया जिससे उन्हें हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का व्यवहारिक अनुभव मिला और साल 2013 में उन्होंने अपना फ्रीलांस इवेंट से शुरुआत की। और इससे पहले जीनिया इवेंट्स कहा जाता था। बाद में 1 अगस्त 2014 को उन्होंने अपनी कंपनी जीनिया हॉस्पिटैलिटी सॉल्यूशंस को आधिकारिक रूप में स्थापित किया और ये कंपनी इवेंट मैनेजमेंट हॉस्पिटैलिटी कंसल्टिंग और रणनीति साझेदारी के क्षेत्र में कार्य करती है।
0: उन्हें विशेष रूप से लग्जरी हॉस्पिटैलिटी कॉरपोरेट गवर्नमेंट और इवेंट मैनेजमेंट के क्षेत्र में उनकी उत्कृष्ट कामों के लिए जाना जाता है। उनकी कंपनी मुख्यतः वेडिंग प्लानिंग कॉरपोरेट इवेंट्स हॉस्पिटैलिटी कंसल्टिंग और डेस्टिनेशन इवेंट्स लग्जरी गेस्ट जो मैनेजमेंट होता है वो सेवाएं प्रदान करती है और उनका काम वी इनवाइट यू यू ओन इवेंट इस आधारा पर आधारित है। यानी ग्राहक अपने कार्यक्रम का पूरी तरह से आनंद ले और बाकी व्यवस्था सब कंपनी संभाल देगी। हॉस्पिटैलिटी के साथ साथ वो कॉरपोरेट गवर्नेंस में भी सक्रिय हैं। वो कुछ बड़ी और प्रसिद्ध कंपनियों में निदेशक के रूप में भी जुड़ी हुई हैं और एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि कॉमेडी क्लब और लाइव इवेंट में काम करते हुए उन्हें अपने व्यवसाय की प्रेरणा मिली थी और इसके बाद उन्होंने स्वयं का ब्रांड भी शुरू किया। जीनिया सामाजिक गतिविधियों में भी सक्रिय रही है और पर्यावरण तथा CSR यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है उसमें गतिविधियों में भागीदारी सक्रिय रही है।
1: ये रही बहुत अच्छी जानकारी उनके बारे में।

सिंगिंग लूप कितनी कितनी दूर तक चल के जाते हैं। अब उसमें दो दो बूंद पानी के लिए तरसते हैं कि वहाँ पे अगर अगर उनको पानी इधर मिल जाए तो बहुत बड़ी बात मिल जाती है। इसीलिए जैसे हमारे श्रोता क्या लिख रही है कि पानी की बचत करना एक अच्छी बात है, फिर वो पैसा हो या पानी, इसके बिना सारी दुनिया है पानी। पृथ्वी पर बसे हर एक जीव के लिए पानी प्राथमिक जरूरत है। पृथ्वी पर पीने योग्य पानी का प्रतिशत बहुत कम है और यही सबसे बड़ा भ्रम है। इन्होंने जो बातें लिखी है ना उसे इस तरह तटबंदी से लिखा है। आगे देखिए क्या लिखते हैं, इसे बचाने के लिए हम भी अपना योगदान दे सकते हैं कि जल के बिना जल भी जरूरी उपयोग बिना जरूरी उपयोग के देश ना करें। पानी के बहते नल को बंद करना जरूरी है। वर्षा का जल का संचयन करना चाहिए जो साल भर तक शुद्ध रह सकते हैं। यदि हम समय पर सतर्क नहीं हुए तो जल दिन मछली जैसी तरक्की है वैसे ही कभी हमें भी तरक्की नहीं है। और कह सकते हैं कि जल की हर एक बूंद में जीवन का विस्तार है। इसकी धरती की प्रार्थना का ये मधुर उपहार है। मत सुनो इसकी साथी में मत इसका मान भरे, जल बचेगा तो ही तुझे मानव का समझूंगा। जो पृथ्वी में धरती थी जल ही जीवन है, ये केवल एक कहावत नहीं बल्कि बहुत बड़ी सच्चाई है। पृथ्वी पर जीवन का आधार जो है पीने के लिए, खेती के लिए, बड़े बड़े जो उद्योग होते हैं उनके लिए, स्वच्छता रखने के लिए, घर को अपने आप को स्वच्छ रखना के लिए पानी जरूरी है और पर्यावरण संतुलन के लिए भी पानी जरूरी है। लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या, जल प्रदूषण और पानी का जो दोहन हो रहा है सबसे ज्यादा, उसके कारण जल का संकट दिनों दिन बढ़ रहा है। और जनसंख्या की सबसे बड़ी बात यह है ना, पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर पानी है, इसी वजह से यहाँ पर जीवन भी पनपा, क्योंकि कहते हैं ना महासागरों में सबसे पहले जीवन पनपा था। वो ये सोचिए कि अगर हम यहाँ पे अगर जल को खत्म कर देंगे तो फिर हमारा अस्तित्व कहाँ बचेगा। तो हमें अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी तरीके से पानी को जरा सा भी ना बर्बाद करें, कि छोटे बच्चे उनको अकल नहीं है तो अगर उसकी शो करें तो उनको समझाएंगे, सिखाई अभी से हम सिखाएंगे तो ही वो आगे बढ़ के समझेंगे। इसी पर हमारे श्रोता ने लिखा है कि पानी की बचत कैसे ना करें। कपड़े बर्तनों को धोया पानी कपड़ों में डालकर नल खोलकर कोई काम ना करें। मग्गे बाल्टी पानी का इस्तेमाल करें जिससे पानी की मात्रा कम हो सके। और इस समय गर्मी के मौसम में पंछी जानवरों के लिए भी पानी जरूर से रखें। पेड़ पौधे लगाएं, आस पास गड्ढे करें जिससे हमें पानी का संचय हो सके। और छतरी रखकर टंकी को ओवरलोड किया हुआ पानी सीधा आप इकट्ठा कर सकते हैं। इस तरह निकासी के लिए पानी को गड्ढों में पेड़ पौधों में छोड़ सकते हैं और पानी की बचत।

करना चाहिए और पानी का उपयोग सोच समझ कर करना चाहिए।

खड़ी की तुम इशारा कर रही हो तो ये तुम छोटा कर दिया। कार्यक्रम के सहायक थे देव दर्शन धूप अगरबत्ती धूप स्टिक फोन एवं पवन सामग्री।

0: इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली। मैं हूँ आपके साथ अंकल वर्मा
1: और मैं हूँ आशीष श्रीवास्तव।
0: और हम बात कर रहे थे पानी की बचत के बारे में। तो बहुत अच्छे से संदेश हमें मिल रहे हैं श्रोताओं से। एक श्रोता ने लिखा है कि सभी इंसानों, जानवरों और पौधों के लिए पानी अत्यंत आवश्यक है। स्वच्छ जल की उपलब्धता से बीमारियों को भी रोका जा सकता है। पानी की कम खपत से प्राकृतिक स्रोतों जैसे नदियों और झीलों पर दबाव घटता है, जिससे जलीय जीवों और जैव विविधता का संरक्षण होता है। जनसंख्या और पानी की मांग तेजी से बढ़ रही है। समझदारी से पानी का इस्तेमाल करने से पीढ़ियों को भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है।
1: बिल्कुल, और साथ ही यह ध्यान रखना चाहिए कि हम जब नहाने जाते हैं तो ढेर सारा वो शॉवर चला के नहाने की आदत होती है ना, तो बहुत सारा पानी बर्बाद होता है। तो इससे बाल्टी से नहाइए, मग्गे से नहाइए, वो ज़्यादा अच्छा है। बल्कि जो इस तरीके से पानी की जो वेस्टेज की जो बर्बादी है वो भी रुकेगी। और साथ ही छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए, जो वर्षा का जो जल होता है उसको भी आप इकट्ठा करके रख सकते हैं, जिस तरह से वहाँ से बताया गया, जिसमें हमारे श्रोताओं ने भी बताया। इस तरीके से आप पानी की बचत जरूर करिए।
0: और जैसे कहते हैं कि जो चीज़ में फ्री में मिलती है, मुफ्त मिलती है, सेवा की कदर नहीं मिलती है। जिस तरह से हवा हमें मिल रही है, जो जीवनदायिनी ऑक्सीजन हमें जहाँ से मिलती है, हम उसकी कदर नहीं करते। पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, हम उसकी कदर नहीं करते। पेड़ों का कटाव बहुत तेजी से हो रहा है। इसी तरह से वर्षा का जल हमें कोई बिना कीमत चुकाए वो वर्षा जल हमें मिलता है, हम उसका संचय करते नहीं और बाद में वही पानी हमें खरीद कर लेना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे देश हैं दुनिया भर में जहाँ जल संकट अति का बहुत ही ज्यादा है। वहाँ चाय की कीमत से ज्यादा पानी की कीमत होती है, ऐसा हमारे श्रोता भी विचार बता रहे हैं कि चाय या अन्य चीजें वहाँ सस्ती मिल सकती है लेकिन पानी वहाँ बहुत ज्यादा कीमत देते हैं खरीद के वो लोग।
1: मैं बताऊँ कि मैं किसी चीज़ खबर सुनी तो सबसे दूसरे जगह जब भी पानी का इस्तेमाल करती है खुद ही एकदम से सतह पर जाती है। बस सोच के सोचो तो उस समय उन लोगों को कहीं दो बूंद पानी मिल जाती तो उनकी जान बच जाती। तो सोचिए कितनी बड़ी बात है, पानी का क्या महत्व है। जब तक हमारे पास बहुत पानी आ रहा है, पानी पी रहे हैं, फेंक रहे हैं, और जब जिस समय कहते हैं ना कि अब पानी कटौती होने वाली नहीं या पानी दो दिन नहीं आने वाला, सब लोग सॉरी और कैसे होगा, अब कहाँ से काम चलेगा। तो हमें सोचना चाहिए, इसी तरह से समय से आप काम करना चाहिए कि अब पानी नहीं।

0: से कमाए, लेकिन जो घुटनियाँ बचती
1: हाँ
0: वो एक नर्सरी को बेचती ताकि नए पेड़ आम के लगाए जा सके। तो यानी कि जो मूल चीज है उससे तो आपने मुनाफा कमाया ही, लेकिन जो बची हुई चीज है उससे भी आपको मुनाफा मिला, दोहरा फायदा, दोहरा लाभ, डबल मुनाफा। इसीलिए कहते हैं आम के आम और घुटनों के दाम, घुटनों के दाम उसने ले लिए
1: और खाली उसने ले लिए, पेड़ लगाने से सबको ही फायदा हुआ, तो बहुत अच्छी चीज है।
0: ये तो हमें कहावत है कि बहुत सारे इसी तरह से हम काम करते हैं कि दोहरा फायदा हमें मिलता है। तो हमारे श्रोताओं के साथ क्या आने वाले हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं।
1: बिल्कुल, तो हमारे श्रोता है जो कहते हैं कि आम के आम और गुटलियों के दाम ये बहुत ही लोकप्रिय मुहावरा है, जिसका मतलब एक ही काम या किए गए प्रयास का दोहरा लाभ प्राप्त होना है। जैसे कि मैं ठहरा बुजुर्ग व्यक्ति, मेरे लिए सखी सहेली सुनना और कमेंट लिखना समय जो प्रसार करने के साथ

0: नाम हमारे शोर में लिखते थे आम ट्रेन में ना हम रोज ही खा रहे हैं और गुठलियों को सहेज कर रख दिया जाता है ताकि जब बारिश आएगी तो इन्हें उगा देंगे। तो हो गया ना आम जामा गुठलियों के नाम एक फन दो काट की तरह ही होती है ये कहावत।
1: एक और हमारे श्रोता जी कहते हैं कि इसमें इसे अंग्रेजी में टू बर्ड्स विद वन स्टोन भी कहा जाता है यानी कि एक चीज की दो निशाने मतलब एक ही मुहावरा है उस मुहावरे को बहुत कई तरीकों से कहा जाता है।
0: का जाम जाम गुठली के दाम और एक चीज से दो निशाने लगभग एक जैसा ही अर्थ होता है।
1: बिल्कुल और व्यवहारिक जीवन में इसका इसको कहा जाता है कि यदि कोई छात्र अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपनी पुरानी किताबें अच्छी कीमत पर बेच देता है तो उसे दोहरा लाभ होता है। और व्यापार की बात करें तो जब कोई किसान आम बेचने के साथ उसकी गुठलियों या छिलकों का उपयोग करके अचार तेल या अन्य उत्पाद बनाने के लिए करता है तो आम की आम और गुठलियों मिलाने तो सच में एकदम सही बैठा। जिन्होंने आम खाया और गुठलियों से उसके छिलकों से अचार बना लिया।
0: और आज ये श्रोता का संदेश है कि ये मुहावरा हमें संसाधनों का सही उपयोग करने और अवसरों का पूरा लाभ उठाने की सीख देता है। दैनिक जीवन में जब किसी व्यक्ति को एक प्रयास से कई फायदे मिलते हैं तब इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। यही कारण है कि मुहावरा आज भी उतना ही प्रासंगिक है और लोकप्रिय भी है।
1: और एक और श्रोता है जो कहते हैं कि भाषा की सुंदरता वृद्धि में मुहावरों और कहावतों आम गुठलियों के दाम का अर्थ ही है उपभोक्ता के पूरे पैसे वसूल। वार्तालाप या कहानी लेख में विषय संग वस्तु का कोई संबंध नहीं रहते हुए भी वस्तु अपनी उपयोगिता गुण और महत्वपूर्णता की स्थिति दर्ज कराई देती है।
0: और हमारे श्रोता तैयार हो जाए अपने बहाने बनाने के लिए जिन्हें वो अक्सर काम में लेते हैं लेकिन तब तक गीत सुन लेते हैं।

0: करने के लिए, बचाने के लिए बहाने का इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ बहाने मैं आपको तुम्हें बताती हूँ, देखो जिनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है सभी के द्वारा, कि बस 5 मिनट पहुंच रहा हूँ या 5 मिनट पहुंच रहे हैं, या अगर फोन नहीं था तो क्या बोलते, मेरा तो फोन ही साइलेंट पे था इसलिए कॉल नहीं देखा, या कहेंगे कि नेटवर्क की प्रॉब्लम भी थी, कहीं अगर समय पे ना पहुंचे तो कहेंगे भाई ट्रैफिक बहुत मिल गया, और अगर समय पे ना पहुंचे या फोन भी नहीं देखा तो अगर मैसेज करने की बात है मैसेज करना भी भूल गए, अचानक से बहुत जरूरी काम आ गया, फोन की बैटरी खत्म हो गई, इस तरह के ब्ला ब्ला बहुत सारे बहाने हैं जो बहुत सारे लोग बनाते हैं। तो हमारे श्रोताओं ने क्या लिखा है बहाने के बारे में, अब ये बात होता है।
1: बिल्कुल, एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि बहाना बनाना कोई आसान काम नहीं है, आप सभी को उल्लू बनाना ये भी आसान काम नहीं है, अगर बहाने में वफाए हो तो ऐसा बहाना बनाओ कि हम राहत की सांस ले सकें। ज्यादातर लोग तबीयत ठीक नहीं होने का बहाना बनाकर आसानी से छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन ऐसे बहाने का उपयोग कब और कहाँ करना है ये सोचना चाहिए, नहीं तो आपके योग वियोग में बदल सकते हैं, क्योंकि कई बार लोगों को लगने लगता है कि नहीं ये तो बहाना बनाया जा रहा है तबीयत खराब होने का, जो बच्चे अक्सर बनाते हैं उससे छुट्टी लेने के लिए।
0: और बहाना जो अक्सर काम करता है, सबसे पहले तो बहाना विद्यालय में बच्चे होमवर्क नहीं करें और कहेंगे कि मैडम कर तो गया लेकिन कॉपी करके रह गई, अब क्या कहें, और शिक्षक बहाना क्यों, किसी काम करने के लिए बचने के लिए अपनी गलती छिपाने के लिए स्पष्टीकरण देने के लिए ये कारण होता है, यानी कि अलग अलग तरह का बचाव है,
1: बहुत ज्यादा स्पष्टीकरण मिलने लगे तो समझ गई थी
0: बहाना। बहानों का इस्तेमाल लोग परिस्थिति से बचने के लिए, टाल मटोल करने के लिए या असफलता को सही ठहराने के लिए करते हैं, जैसे लेट हो गया, ट्रैफिक बहुत था, तबीयत खराब हो गई, बैटरी खत्म हो गई, तो जरूरी काम आ गया वगैरह।
1: बिल्कुल, एक छोटा है जो कहते हैं कि बहाने जो अक्सर काम आते हैं इसी से, पर एक बहाना ऐसा है जो हम सभी ने कभी न कभी बहुत लोग असर करते हैं और वो सटीक लग भी जाता है, और वो है फोन कॉल से संबंधित। अगर किसी अनचाहे का कॉल अटेंड नहीं करना हो तो सीधा सीधा बहाना होता है, अरे फोन तो चार्जिंग पर लगा था या साइलेंट मोड में चला गया था, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल हटकर है, कोई भी रिश्ता झूठ से नहीं बल्कि सच्ची कर सकता है। डॉक्टर कह रहे हैं कि अगर हम जबरदस्ती में बार बार बहाना करेंगे तो सामने वाले को भी एहसास हो जाएगा कि ये बहाना ही है।
0: और हमारे श्रोता ने लिखा है कि बचपन में जब भी स्कूल जाने का मन नहीं होता तो सबसे बड़ा अच्छा बहाना होता था कि पेट दुख रहा है, और अक्सर बहाना करते हैं। और आगे श्रोता लिखते हैं कि बहाना जो अक्सर काम आता है, तो ये कहूँ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, दफ्तर ना जाना हो तब भी हम यही बहाना बनाते हैं, घुटनों में दर्द है, कहीं जाना आना संभव ही नहीं है,
1: अक्सर होता है ऐसा। और एक श्रोता जो कहते हैं कि बहानों में हमारी श्रीमती जी का एक, हमारे जो श्रीमती जी वो एक नंबर है, कुछ काम कहो तो बहाना बनाती हैं, तो मैं समझ जाता हूँ कि और वो स्वयं काम कर लेता हूँ, और फिर वो कहती है मैडम अरे बात करने थोड़ा धैर्य रखे तो हम कर ही देते, लेकिन इसमें हल्की फुल्की बहाने लोग जो प्यार रखते हैं तो दोनों खुश हो जाते हैं, और फिर वो हमारी तारीफ भी करते हैं, आप काम कर देंगे तो तारीफ तो आपकी होगी, अच्छी चीज है इस तरीके का बहाना, और आप उनकी बात मान के थोड़ा बहुत काम करने का हाथ बता देते
0: हैं। हमारे श्रोता ने लिखा कि बचपन में स्कूल जाने के नाम पेट दर्द का बहाना बनाया करते थे, पर मैंने एक बहाना अभी भी मारा है, मुझे सोशल मीडिया पर कुछ अटेंड करना था, स्कूल में ट्रेनिंग चल रही थी तो मैंने ऐसे ही बहाना मार दिया कि मेरा पेट खराब है, लेकिन मैं पकड़ी गई और मुझे स्कूल जाना ही पड़ा, और उस समय सोशल मीडिया पर प्रोग्राम अटेंड नहीं कर पाए, वो प्रोग्राम सोशल मीडिया पर भी आ रहा था और वीडियो पर भी था, लेकिन मैंने ना दे दिया, और इसलिए सोशल मीडिया, लेकिन मुझे याद है कि मैंने क्या किया था।
1: लेकिन आप सबको बड़ा सही जो कहते हैं कि मेरे हिसाब से हर व्यक्ति के अपने अपने बहाने होते हैं, समय और परिस्थिति के अनुसार लोग वही बहाना चुन लेते हैं जो इस वक्त उनको सही लगता है। और मेरे साथ भी एक मजेदार घटना हुई, मेरा एक दोस्त का जन्मदिन था, मुझे उसे विश करना था, सुबह तक तो मुझे उसका जन्मदिन याद था, लेकिन दिन भर की व्यस्तता में मैं उसे विश करना भूल गई, शाम को जब उसका फोन आया तो वो मुझसे थोड़ी नाराज थी, तब मैंने मुस्कुराते हुए कहा अरे यार मुझे याद था बस दिमाग से निकल गया, सच कहूँ तो अरे हाँ मैं तो भूल ही गई थी या मुझे याद था बस दिमाग से निकल गया, ऐसे बहाने जो हम में से ज्यादातर लोग कभी ना कभी जरूर इस्तेमाल करते हैं, मैं करती हूँ। हालांकि कई बार ये सिर्फ बहाना नहीं बल्कि सच भी होता है, क्योंकि रोजमर्रा की भागदौड़ और जिम्मेदारों के बीच कुछ बातें सचमुच दिमाग से निकल जाती हैं।

0: फोन सारे पे था, बैटरी खत्म हो गई थी, चार्जिंग पे लगा था। आजकल क्योंकि बच्चे में भी फोन करना भूल गए, तो ये बहाना तो हर कोई बनाता है। या हम कहेंगे कि भाई घर पे कोई आ गया था, ये बहाना बहुत होता है। तो अब बहानों की बात चली है तो बताएं हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं। कहते हैं कि बहाने यानी दो तरह के होते हैं। इससे हमें नहीं मिलना होता है तो हमारे किसी से, अगर हमें नहीं मिलना होता तो हमारे पास 100 बहाने आ जाते हैं। और किसी से मिलना चाहते हैं तो बहुत बहाने हम निकाल भी लेते हैं। बस बहाने की बात है, मिलना ना हो तो हम बहाने बनाकर मिलने भी जाते हैं, ना मिलना हो तो बहाना बनाकर टाल देते हैं। और यही बता बिल्कुल। और एक हमारी सूचना की लिखती है कि अभी कल की ही बात है, मैं अपनी बहन के घर आई हूँ, वो लोग कहीं घूमने गए, उनकी देवर की गलती इतवार को मेरे साथ मेरी घर पर लंच करना चाह रही थी अपनी माँ के साथ। इतनी गर्मी हो रही है, मैंने बचने के लिए कहा कि मैं अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रही हूँ। इस तरह से मैं कहीं गई भी नहीं और घर में इतनी गर्मी में किचन में काम करने से बच गई। ये बहाना मेरे लिए बहुत लाभदायक रहा, लेकिन आप उनको पता चल गया होगा उन्होंने सुना होगा प्रोग्राम।
1: अगर वो ये सुनते हैं उन्हें भी ये
0: कि आपने बहाना बनाया था खाना बनाने से बचने के लिए।
1: और हमारी छोटा ने कहा कि जब बहुत छोटे थे और स्कूल में पढ़ते थे तो एक तो बच्चों का कॉन्वेंट स्कूल और बहुत खर्च भी वहाँ पर था, और कई बार बजट डिस्टर्ब ना हो जाए तो कई बार बहाने बनाने पड़ते थे। जैसे एक बार बच्चों ने महंगी साइकिल लाकर देने को कहा तो मुझे बहाना बनाना पड़ा कि मेरे मित्र ने अपने बेटे के लिए जो साइकिल खरीदी थी वो 15 दिन में ही टूट गई और

0: तो मेरे साइकिल मांगने के लिए जीती वो छोड़ दी थी। बहुत बढ़िया बात है। और देख हम इस समय एक छोटी सी बात को लेते हैं, आम श्याम गुटियों के दाम पर जो हमारे उन्होंने लिखकर भेजा है, कहते हैं कि जब मैं बहुत छोटी थी तो उसमें चूसने वाले आम बहुत आते थे, उसमें जब हम आम खा चुके थे तो गुटकी को मेरी दादी एक टीम के डिब्बे में इकट्ठा कर लेती थी। बाहर छत पर रखा डिब्बा बहुत दिन तक रखा रहता था और गुटली इकट्ठा होती रहती थी, और फिर बरसात में भी भीगती थी। जब बहुत ही गुटली इकट्ठा हो जाती थी तो उसे डिब्बे में उबाल कर ठंडा होने पर गुटली को तोड़कर उसके बीज को नमक लगाकर खाती थी। यही हमारा मुहावरा बन गया कि मतलब आम तो खाएं गुटलियाँ भी खाएं।
1: अचार में भी कई बार गुटलियों का प्रयोग किया जाता है, जो हमें बड़ा अच्छा तो स्वाद होता है लेकिन बहुत मीठा स्वाद होता है। हमारे पुराने फिल्मी गीता में भी

0: छोड़ के विवेक भारती केंद्र से बोल रहे हैं। संक्षिप्त 1.8 मेगाहर्ट्ज़ पर अगले प्रसारण के लिए आइए। चुनते हैं विवेक भारती की राष्ट्रीय सेवा।
1: मेरे ख्याल से पहली बार आई हूँ मैं इसके लिए और अच्छा लग रहा है, अच्छा है।
2: तो इस समय दोनों लोग आपकी बातचीत सुन रहे हैं हमारे प्रोग्राम के माध्यम से और उन्होंने आपकी फिल्में देखी, उन्हें बहुत सारी बातें याद आ गई होंगी, बहुत सारे सीन याद आए होंगे, कभी आपने उनको रुलाया होगा, कभी हंसाया होगा। मैं सबसे पहले कि फिल्मों आपकी याद करती हम जानना चाहेंगे, आपसे बिल्कुल बचपन में जाना चाहेंगे और आप ये जानना चाहते हैं कहाँ आपकी पैदाइश।
1: मेरी पैदाइश थी चेन्नई के पास, एक जगह छोटी सी जगह है जिसका नाम है चेंगलपेट। तो वहाँ पर मेरे वालिद साहब कमिश्नर थे, तो वहाँ पैदाइश थी। मेरे ख्याल से कुछ घंटे डेढ़ घंटे का सफ़र है चेन्नई से, वहाँ

थे तो हम विजयवाड़ा में थे आंध्र प्रदेश में, तो मैंने कई बार डांस परफॉर्मेंस स्टेज पे दिए थे। उस वक्त मैं बहुत छोटी थी, तो साउथ इंडियन मूवीज जो थी वहाँ से मुझे ऑफर आ रहे थे। तो उस वक्त मेरे वालिद साहब ने कहा कि तेरी उम्र बहुत छोटी है, अभी पढ़ाई भी नहीं खत्म हुई, तो अभी वैसे एज ए प्रोफेशन शुरू करने का इरादा भी नहीं था। मगर उसके बाद मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया, तो मैं 13 साल की थी। फिर भी मेरी मुझसे 3 बड़ी बहनें हैं, उन सब की शादी हो चुकी थी, तो मैं रह गई थी और मेरी बारी थी शादी होने की। साउथ से मतलब मद्रास में, उस वक्त सारी इंडस्ट्री मद्रास में थी, वहाँ तेलुगु या तमिल दोनों फिल्में बनती थी। तो फिर जब ऑफर आया तो मैं दीवार तो मैं तो बहुत खुश हो गई, थैंक हो गई। तो वो प्रोडक्शन में तो उन्होंने मेरे वालदा से कहा कि नहीं, मैं रहमान साहब को जानता हूँ, मिल चुका हूँ, तो अब इस बात को बदल रहा है, कुछ एक बाकायदा

चेंज माय लाइफ एंड डेज। तो फिर वो बहुत कामयाब हुई फिल्म। तो मेरे प्रोड्यूसर डायरेक्टर कहने लगे, आपको पता है जब आप खत्म हो जाते फिल्मों में मैंने तो कभी नहीं देखा, लोग पैसे फेंकते हैं और जब मेन आर्टिस्ट नहीं हो तो फिर मैं और

वो गाने को दोबारा प्ले करते थे तो वो इतना ज्यादा कामयाब हुआ था वो गाना। और फिर इसलिए मैं अपने डेस्टिनी पे बहुत मानती हूँ। और ये इसके सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन हो रहे थे पूरे आंध्र प्रदेश में, तो हम हैदराबाद गए तो वहाँ उसके पास से गुरुदेव जी क्यों गए थे वो खुदा ही बेहतर जाने, वहाँ थे वो। तो वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर के ऑफिस पर बैठे हुए थे तो काफ़ी शोर शराबा, दो तीन मोटर

0: सुनी तो कुछ ज्यादा बात नहीं हुई, थोड़ी देर जैसे 10-15 मिनट में मेरी वालिदा थे, कुछ खास कहा नहीं उन्होंने, ये भी नहीं कहा कि आप बॉम्बे आइए। खैर हम वापस मद्रास पहुंचे तो जिसको भूल गए हम। 6 महीने बाद फिर उन्होंने किसी को भेजा मद्रास, तो उन्होंने कहा वो हम मिले थे हैदराबाद में, उनको बॉम्बे आने के लिए तो साइन करना चाहते हैं उस तरह से। CID पहली मेरी हिंदी फिल्म थी और दूसरी क्या था
1: तो CID और क्या थी बात करें उसके पहले हम

0: परेशानी है वो सोचते थे, गौर से देखते थे, उसको पूछते थे आर्टिस्ट को कि आपको तकलीफ क्या है, आप समझ नहीं पा रहे हैं या ये करते वक्त आपको किस चीज की तकलीफ हो रही है। तो उससे फिर कर दिया, अगर कोई बात मेरी समझ में नहीं आए और क्योंकि मैं नई नई थी और बहुत पेशाई थी तो पूछती नहीं थी। हाँ गुरुदेव जी पूछ रहे थे आपका कुछ प्रॉब्लम है लगता है, क्या है, क्या तकलीफ हो रही है, आपको डायलॉग नहीं ठीक लग रहा है या मूवमेंट नहीं ठीक लग रहा है। तो उससे कॉन्फिडेंस आया कि ये तकलीफ हमारी पूछ रहे हैं तो मैं उनको बता सकती हूँ, ये नहीं हो रहा है मुझसे।
1: गुरुदेव साहब
0: हाँ
1: को कैसा डायरेक्टर मानती
0: है? हाँ डायरेक्टर तो वो बहुत ही बढ़िया थे क्योंकि वो बहुत गौर से देखते थे, वो खामोश रहते थे तो स्टडी करते थे कि किस कौन सा आर्टिस्ट क्या क्या किस हद तक क्या उसने खुद से जॉनी वॉकर या महमूद वगैरह वो सबके परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे होते थे क्योंकि उनके वो समझते थे इनकी इनकी लिमिट ये है, ये इनसे इतना ऐसे करवाओ।
1: उनके डायरेक्शन में कौन सा सीन आपको सबसे बेहतरीन लगता है, यादगार लगता है आपका, कौन सा सीन?
0: कागज के फूल में वक्त ने किया क्या हंसी थी तब, वो एक गाना है जो अब तक मुझे बहुत यूनिक लगता है इसलिए कि वो अपने जो कैरेक्टर है वो अपने ख्यालात को जाहिर कर रही हैं मगर बिना लिप मूवमेंट के, ये जैसे दिल की आवाज है। और मैंने कहा लिप मूवमेंट नहीं होगा ये कैसे गाना होगा, तो बोले आप तो ये वो इसमें खुले खुले जाहिर करे अपने फीलिंग्स को, जैसे शॉर्ट्स होंगे उससे वो जैसे उसका विजुअली जैसे हम प्ले करेंगे तो गाना पीछे से बजेगा ज्यादा इफेक्टिव होगा।
1: आप उसको एक्सप्रेशन लाने के,
0: हाँ एक्सप्रेशन लाने के, और उसमें तो मैं कहूँगी एक्सप्रेशन बहुत उन्होंने अच्छे एक्सप्लोर किए और उसकी उससे और भी वो चीज़ एनहांस हुई थी मतलब और बढ़िया दिखती थी।
1: आपने जिस गाने का जिक्र किया था उसके फूल का हॉन्टिंग और उसकी मेलोडी जो है आज तक
0: हाँ
1: बहुत बिल्कुल सुन लेने वाली,
0: बिल्कुल
1: क्यों नहीं गाना सुना जाए?
0: बिल्कुल क्यों नहीं,

0: た人もあるので、ね、自分でそういうのがあったらいいです。じゃあ、ロケさんが作った絵が見えてきてやった方が、行く待ってたらいい。
1: 実際に待っても僕たちは絵が見えてきてるのね。पूरी फिल्म बन गई थी तो चार चार में सबने देखी तो सब एक दूसरे आपस में बात करते हैं कैसी है क्या है तो मैंने फट से कह दिया कि पीछे चली गई तो हाँ मैंने कह दिया तो अब राज साहब उनको बहुत बुरा लगा बोले अभी तुम अभी छोटी बच्ची हो तुम्हें क्या पता क्या किस हिसाब से बहुत गलत पता नहीं क्यों मेरे मन में आया कि चली गई नहीं थी तू चार तू है भी तो बोले अच्छा एनीवे देखते हैं वो दिमाग से वो हो गई तो इतनी उस वक्त समझ भी बुरी थी कि बहुत दुख तो हुआ और मुझे इतना शौक नहीं लगा तो मैंने कहा मुझे तो पता ही था कि पीछे नहीं चलने वाले
0: लेकिन बाद में वो बिल्कुल ऐसा लगने लगा कि जैसे वो अपनी कहानी कह रहे हैं
1: नहीं मगर जब वो गुजरे तो उनसे डाउनफॉल हुआ था ना अपनी क्या उसके बाद बनी थी साहब बीबी और गुलाम उसको भी अप्रिशिएट बहुत किया गया अप्रिशिएट और फिर वो फेस्टिवल में गई थी
0: तो वही भी साहब बीबी और गुलाम का जिक्र आया है डायरेक्टर के रूप में नाम आता है दादा जी साहब का लेकिन पूरी फिल्म में लगता है कि शैडो के रूप में गुरदत्त साहब पहुंचे हुए हैं पूरी फिल्म में वो झलक जो है वो आपकी रोड है पर्सनल के निर्देशन की झलक दिखाई पड़ती है
1: अभी देखिए अब राज साहब क्योंकि उनसे उनके साथ शुरू से काम कर रहे थे तो नेचुरली उनका इन्फ्लुएंस तो होगा ही ना तो उन्होंने हमेशा गुरदत्त जी के पॉइंट ऑफ व्यू से शूटिंग की होगी और डिस्कशन होते थे होंगे उन दोनों के आपस में क्योंकि जब मैं अकेली काम कर जहाँ गुरदत्त जी नहीं थे तो उसमें गुरदत्त जी नहीं आते सकते और जब गुरदत्त जी थे सीन में अगर

कहते हैं बोले नहीं ये मतलब नहीं है आप समझ नहीं रही एक एक मेच्योर औरत का रोल है जो औरत अपने हस्बैंड के प्यार के लिए बहुत ज्यादा तड़पती है उसको समझ नहीं आ रही है कि आप नहीं कर पाएंगे करें नहीं बोले वो नहीं आप समझे नहीं आप अभी बहुत छोटी हैं इस चीज को क्या

0: भूल जाओ इस चीज को। तो मैं समझ गई बाद में क्या कहना चाह रहे हैं। तो
1: तुम्हारी बहुत बेहतरीन फिल्म होता है, बहुत ही खूबसूरत फिल्म है। कोई यादगार संस्मरण इस फिल्म से जुड़ा है, कोई आपको याद आता, कोई पसंद याद आता हो?
0: मुझे रोल अच्छा लगा था क्योंकि हाँ उसके बाद गुरजीत जी ने कहा आप नहीं करेंगे तो बात खत्म हो गई। तो जब अबराज साहब डायरेक्ट करने लगे तो वो एक दिन घर पे आके मुझे देखो मैं पहली बार डायरेक्शन कर रहा हूँ, अगर आप नहीं करोगे तो लोग सोचते हैं कि मैं नया डायरेक्टर हूँ इसके लिए नहीं करूँ। मगर मैंने कहा आपको तो कास्टिंग हो गई है अभी मीना जी के साथ। बोले नहीं जबा का रोल है वो भी गुरजीत जी को बताया तो उनको ताज्जुब हुआ, भाई तुम आप समझ नहीं रहे हैं चौधरी के फैन के बाद आप एक बहुत बड़ी स्टार बन गई हैं, ये तो सेकेंडरी रोल है टाइटल रोल नहीं है, क्यों करेंगी आप? तो मैंने कहा मुझे कोई हैंग अप नहीं है, मुझे कोई एतराज नहीं है, मैंने कहा वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है जबा का रोल, डिफरेंट डेफिनेट कैरेक्टर है। तो बोले आपको मैं नहीं कह रहा हूँ आपको करने के लिए। तो मैंने कहा नहीं अबराज साहब ने इतना कहा तो मैं कर लूँगी। तो उसके मैंने एक तो मेरा अपना काम है भंवरा बड़ा नादान, उसमें जो शरारत कैरेक्टर थी वो बहुत अच्छी थी, मगर उसका दूसरा जो गाना जो मुझे बहुत

0: piace da Cirulli, perché sei un godo di direttore. Tu mi hai di mamma godo di more direttore di una mezza. Sapete che altre cose si chiedono, si chiedono le che hanno dei problemi, tutto solto, si chiedono, se non si chiedono, se farlo. तो वो एक रैपोर क्रिएट हो गया था उनके साथ हाँ इनके साथ बात कर सकती है कुछ कह सकते हैं कि ये नहीं हो रहा है हमसे तो वो समझाते थे वो था फिर गुरदेव फिल्मों की एक बड़ी अच्छी बात थी कि वो एक ही किस्म के नई फिल्में बनाते थे जैसे सी आई डी बनाई सस्पेंस थ्रिलर थी फिर क्या था इसे सीरियस पोएट्री थी फिर चौधरी का चांद रोमांटिक मुस्लिम बैकग्राउंड पर थी फिर शाह बबी खान बड़ी वेराइटी हुआ करती थी वो बड़ी अच्छी बात थी और फिर चौधरी का चांद फिर उन्होंने खुद नहीं डायरेक्ट की एम सादिक साहब ने की तो तब मैंने पूछ लिया आप किसी और को दे रहे हैं तो कुछ ही कहो मगर वो जो उर्दू जबान का वो जो मजा है वो कोई छोटी सी बात मैं नहीं समझ सकूंगा क्योंकि ये मेरी अपनी जबान है ही नहीं अगर सादिक बाबू करेंगे तो छोटी छोटी बातें होंगी हाय अल्लाह कहने का भी अंदाज उनको जो मालूम होगा जो मुझे नहीं पता होगा यू नो और खासकर वो लखनऊ के हैं उस तरह से सही बात थी तो उनका अगेन डिस्कशन जरूर होते थे होंगे बट ऑन द फैक्ट सिर्फ सादिक बाबू ऐसा नहीं महसूस हुआ कि गुरदेव जी बैठे हो कह रहे नहीं आप बैठिए मैं ये शॉट ले रहा हूँ ये वो उतनी रेस्पेक्ट देते थे अपने डायरेक्टर को ऐसी वैसी कोई बड़ी आर्टिस्ट नहीं छुट्टी मेरी राय है जस्ट कोई गलत ऐसे लगे तो मैं पूछती थी लॉजिकली ये कैसे हो सकता है भाई आप लॉजिक में बहुत जाती हैं एक चीज होती है फिल्मों में उसको कहते हैं सिनेमैटिक लिबर्टी तो हमको लेनी पड़ती है
1: लॉजिक की सुधारी आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं बॉलीवुड फिल्म अभिनेत्री वहीदा रहमान इनसे बातचीत कर रहे हैं कमल शर्मा
0: देव साहब के साथ चीजें पहले उस लेडी में थे तो मेरा उनका बहुत अच्छा एक वो भी अगेन ही वाज अ वेरी क्वाइट पर्सन बहुत ही वाज नॉट अ टॉकेटिव पर्सन मगर वेरी नाइस वेरी डिसेंट और बहुत अच्छा था उनके साथ
1: उनके साथ कोई यादगार सवाल आपका तो सिंपल
0: हाँ एक बार हम उनकी प्रोडक्शन थी काला बाजार नवकेतन की

तो मिलिट्री कॉन्वॉय आ रहा था। ओह, मैंने कहा दे भाई आगे से मिलिट्री कॉन्वॉय, और ये रास्ता इतना नैरो था कि कोई एक दूसरे को ये नहीं कह सकता,

0: सर मैं आया था गोल्ड साहब बहुत अच्छे डायरेक्टर माने जाते हैं और सुना कि उसका जो डांस का सीक्वेंस था जो मैं आपको घबरा रही थी वो कौन सा सीक्वेंस था जिसमें दीवार पर चढ़ के डांस
1: आज फिर जीने की तमन्ना है। बहुत अच्छी तरह से पिक्चराइज किया गया था। उसका जो मूड था वो गाने में, उस म्यूजिक में, उसके लिरिक्स में और पिक्चराइजेशन में इतना उभर के आया तो वो एकदम परफेक्ट था। तो उदयपुर के पास के वहाँ शूटिंग कर रहे थे, कुछ खंडर है वहाँ पर, वो ऊँची वहाँ से कुछ बहुत कुछ थी और ज़्यादा चौड़ी भी नहीं थी और बीच में गैप था। तो वो कहने लगे आप इतनी खुश और इतनी मतलब लिटरली जो आप कह रहे हैं आप जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाए तो मर जाए, मगर खुश है तो जाते हैं जब कर जाते हैं। तो मुझे थोड़ी कभी कभी हाइट से वर्टिगो सा होता है। मैंने नीचे देखा, मैंने कहा अरे बाप रे, मैंने कहा टूटे हुए पत्थर खंडर, मैंने कहा गिरे तो हड्डी तो जरूर टूटने वाली है, मैंने कहा गोल्ड की एक क्या ज्यादती है भाई, मैं भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। तो बोले दो चार बार आप मेरे साथ रिहर्सल कीजिए, अगर आपको थोड़ा सा ये हो तो बाद में पता चलेगा तो खुश लेगा। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: गाइक की पूरी बात करें हम बहुत सारे हैं वैसे जी, इसमें आपने रोजी का कैरेक्टर किया और उस दौर में विमल लिख की बात अगर हम कर रहे हैं या नारी की मुक्ति की बात करें, इस तरह के आंदोलनों का नाम भी शायद हुआ है, लेकिन दूसरी एक ऐसा कैरेक्टर जिसने उस स्त्री की जो एक परंपरागत इमेज थी ट्रेडिशनल में उसको तोड़ा, वो उसको एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी।
1: ये क्या हुआ, जब मैं फिल्मों में आई मेरे दिमाग में बस एक ही बात थी कि जो भी रोल हो उसका परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। और क्योंकि मैं हो सकता हमारी फैमिली में कोई फिल्मी कनेक्शन नहीं था, परफॉर्मेंस से मेरा मतलब था, क्योंकि आजकल भी लोग पूछते हैं आपने सीएडी का रोल कैसे किया, वो तो वैम्प का रोल था, फिर मैं कहती हूँ वैम्प का रोल नहीं था। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से वैम्प वो होती है जो इंटेंशनली किसी का बुरा चाहती है। वो कैरेक्टर तो फंसी हुई थी, एक गरीब लड़की थी, किसी के

0: कि आप शादीशुदा औरत हैं, उसके बाद जाके आपका राजू से इश्क होता है वाटर, तो ये कैसे हो सकता है? ये तो नेगेटिव कैरेक्टर है। फिर मैंने कहा भाई मैं नहीं मानती नेगेटिव कैरेक्टर या पॉजिटिव कैरेक्टर, ये एक कैरेक्टर है, एक नॉवल लिखी गई है। और ये नहीं कि अक्सर फिल्मी कहानियां क्या होती हैं, दिमाग में जिस आर्टिस्ट को लेने वाले हैं उनके पर्सनैलिटी के हिसाब से लिखी जाती है। ये एक प्रोफेशनल ऑथर लिखे उसको हम प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे लिए एक फिल्म मेरी कमर, उसमें मेरा नाम था सीता और मनोज का नाम था मेरे हैदराम ऑब्वियसली। तो वो उन्होंने बहुत ऑब्जेक्ट किया, आपने ये रोजी का रोल किया, मेरे को आपने बर्बादी कर दी, ये पिक्चर नहीं होती, तो क्या होगा? तो मैंने कहा एक बात बताइए, उसमें राजकुमार का एक कैरेक्टर है जो पिछले जन्म में हम दोनों का बड़ा प्यार है, तो इस जन्म में आते रहते मैं एज ए स्वीट पॉकेट चली जाती हूँ, तो वो सीता का राम पिछले जन्म में कहाँ चला गया? जैसे इस जन्म में आप कह रहे हैं सीता को तो हर वक्त सीता के राम के साथ ही होना चाहिए, तो ये आर्ग्यूमेंट होगा अच्छा नहीं लगा, चुप हो गए। फिर भी मेरा ख्याल से गलत ही, आपकी गाइड जो है वो चलेगी नहीं और आपको बहुत मतलब क्रिटिसिज्म मिलेगा। मैंने कहा आई डोंट केयर, मुझे करना है, मुझे रोल बहुत अच्छा लगा।
1: और दोनों ही फिल्म वाले थे अच्छा
0: ठीक है,
1: तो गाइड के लिए भी फिल्म के अवार्ड मिला।
0: बिल्कुल सही,
1: कभी आपको ऐसा लगा कि ये दो फिल्मों को अगर हम छोड़ दें, आपने बहुत अच्छा काम किया और उसके लिए आपको अवार्ड नहीं मिला, कभी ऐसा कि नहीं इसके लिए भी मिलना चाहिए था? मुझे
0: मुझे अपना रोल मुझे जीने दो में बहुत अच्छा लगा था, वो भी कंप्लीट रोल था, उसको किडनैप किया जाता है, फिर उससे शादी होती है, फिर वो माँ बनती है, कैसे उसमें चेंज आता है, कैसे वो अपने हस्बैंड को डाकू को समझाती है कि भाई छोड़ दो इन सब चीज़ों को, सरेंडर कर दो बच्चे के साथ। तो इमोशंस के जो वेरिएशन और अप्स एंड डाउन थे वो बहुत अच्छा कैरेक्टर था, मुझे लगा शायद उसमें अवार्ड मिलने का चांस है, वो नहीं हुआ।
1: डाकू की समस्या पर वो फिल्म थी,
0: हाँ
1: सुरेंद्र साथ ही साथ में,
0: हाँ जी।
1: और सुरेंद्र साथ ही साथ में आपने खूब दौरे वाले भी किए, फौजियों के बीच में जाकर भी खूब काम किया, उनके साथ में उनके ग्रुप के साथ में जाकर भी मैं आगे
0: बढ़ी। तो उनका था एक एजेंडा आज ग्रुप के संगठन का, तो हम दान गए थे उनके साथ और रास्ते में जो भी सिलीगुड़ी जहाँ भी जाते जवान थे वहाँ बहुत अच्छा भी लगता था उन लोगों को देखकर, खुशी भी होती थी, दुख भी

0: भी गर्मी में कहाँ रहती हो सकते हैं, जरा बाहर ताजी हवा खाइए। ठीक है, तुम पता मुझे क्यों बाहर भेज रहे हो? मैंने कहा क्यों, तुम कच्चे मारो। तो मैंने कहा देखिए, अगर मैं एक कच्चे मारूँ तमाशे पड़ेंगे उसको, तो हंसने लगी। बोले नहीं नहीं अच्छा मैं जाती हूँ। फिर मैंने सुनील दत्त को कहा डायरेक्ट को, अगर तमाशे पड़ने से पहले कोई पोजिशन मेरी या डायलॉग अलग बोल दिया कुछ भी हो तो मैंने कॉन्शियस कर दिया क्या कसके मारे। बाद में एक दिया मैं बहुत कसके।
1: संगीत बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही दिल को छूने का संगीत दिया है।

लेकिन था और एक था, दे वर नॉर्मल कैरेक्टर, जैसे कि मार्को का या राजू का या रोजी का, कि हर इंसान हर वक्त कोई चेंज तो होता नहीं और ना ही पूरा बुरा होता है। और एक पॉइंट आता है लाइफ में, सिर्फ जो अपने आप से जीना चाहते हैं, तो रोजी का पैशन था डांस करना। वो उसको मार्को से नहीं मिलता तो उसको एनकरेजमेंट राजू से मिलता है। फिर एक पॉइंट आता है जहाँ सडनली राजू सेल्फिश हो जाता है कि वो

0: सारा जो सेल्फिश हो जाता है, उसको एक ऐसी की आदत पड़ जाती है, पत्ते खेलना, शराब पीना, वो कहते हैं कहाँ से जिम्मेदारी ले शादी बच्चों की। सो हर एक मौके पे कभी मार्को सेल्फिश हो गया था तो अपने पैशन में, तो उसने अपनी बीवी को भूल जाता है। अब रोजी पैशनेटली डांसर बनना चाहती, वो बन जाती है, फिर कहती है नाउ आई वांट टू गेट सेटल्ड। फिर उस वक्त राजू कहते हैं नहीं अभी कहाँ सेटल हो, चीज जो थी उसको बड़े डेलिकेट ये था। सो यू नेवर फील जब आप मूवी देखते हैं कि ये कैरेक्टर अच्छा है बैड पर्सन, नो नो बॉडी इज बैड एंड नो बॉडी इज गुड।
1: देश आपके साथ और जो आपके लोगों की वो भी बड़े सदाबहार अभिनेता रहे और उनके साथ में आपकी बड़ी यादगार फिल्में रही हैं, हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे उनके बारे में कुछ और आपके मन की बातें, कुछ और बताइए उनके बारे में कैसे हैं उनके साथ में केमिस्ट्री थी आपकी खासतौर से। एक होता है कि अभिनेता और अभिनेत्री के बीच में एक वही ट्यूनिंग वाली बात है, एक इंसान के रूप में भी हमारे इससे होते हैं कैसे।
0: जैसे मैंने कहा वो भी बड़े टॉकेटिव नहीं, उनको बात करने बाहर निकालना पड़ेगा सवाल कर करके। तो हम प्रेम पुजारी जब सुनाने आए तो वो उनकी पहली डायरेक्टोरियल डेब्यू डायरेक्टोरियल मूवी थी, तो कहने लगे मैं पहली बार डायरेक्ट कर रहा हूँ तो तुमको तो करना ही पड़ेगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है कर लेंगे, हाँ हाथ लगा रहे थे जरिए। तो बड़े कोऑपरेटिव और अच्छे प्रोड्यूसर हैं, उनके साथ कोई ऐसी तकलीफ नहीं होती। जब हम यूरोप गए थे प्रेम पुजारी की शूटिंग के लिए, लंदन, स्विट्जरलैंड, बार्सिलोना वगैरह, तो वो काफ़ी थे, बहुत मैं तो उनको मजाक में एवर इन बैटरी बुलाती हूँ क्योंकि वो कभी थके कभी, मैं तो कहती भाई मैं थक गई अभी पैकअप कर ले, तो वो तो कभी नहीं कहते थे। वो उसी में जब खासकर जब वो प्रेम पुजारी डायरेक्ट कर रहे थे तो शॉट देते थे, शॉट अरेंज किया ओके हो गया, फिर कैमरामैन को कहते थे ये शॉट है ऐसा है, फिर भाग दौड़ फिर वो पसीना पसीना हो जाते थे, तो ऊपर कमरे में मेकअप रूम में जाते थे फिर ताजी शर्ट पहन जाते थे ताकि पसीने वाली शर्ट नहीं हो शॉट के, फिर वो हुआ फिर उसको सुखाते थे वो कर रहे। मैं कहती दे आप हमेशा ऑल द टाइम यू फुल ऑफ एनर्जी सो यू आई विल कॉल यू एवर रेडी बैटरी।
1: अभी भी उनके अंदर जैसे नौजवान होता है और वो फिल्में बनाए जा रहे हैं, बेशक वो सफलता मिले ना मिले लेकिन वो कारवा नहीं रुका है, उनका जज्बा अभी भी वैसे ही है और फिल्में बनाई जा रही है। अभी उससे कभी फोन फोन पे आपकी बातचीत होती, मुलाकात होती
0: है? नहीं, तो एक बार फिल्म खत्म हो जाती है सब अपनी अपनी जिंदगी में बिजी हो जाते हैं। मेरे जो फिल्मों में दोस्त हैं वो एक्सेप्ट नंदा मेरी बेस्ट फ्रेंड है, और उसके बाद सिवाय काला बाजार के बाद हमने कोई काम नहीं किया, मगर 40-45 साल की दोस्ती रही है। सलीम साहब हैं, यश जौहर हैं, जो शेर जौहर थे बेचारे, उनसे उनकी फैमिली से वैसे भी काम से कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि उनकी फिल्मों में से यश जौहर के काम ही क्या। हालांकि यश जौहर को मैं सबसे जानती हूँ जब वो मुझे की नहीं देने थे प्रोडक्शन कंट्रोलर, और फिर नव केसर में थे गाइड के वक्त प्रेम पुजारी में थे, तो तब से मुलाकात दोस्ती है, वो हमेशा मिलते रहे हम।
1: वही जब करने को इतनी सारी बातें हैं

सभी लोग की सितारी कार्यक्रम को फिर से रोशन करेंगी। भूलिएगा मत, अगले रविवार फिर से सुनिएगा सभी लोग की सितारी कार्यक्रम। हम आपको बता दें, मनीषा जी से हमारे साथ ही कमल शर्मा ने बातचीत की। इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड करने में हमें तकनीकी सहयोग

झारखंड सरकार ने राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ता

कर घर में आपके पास है आपकी दोस्त प्रीति शर्मा। तो आज ये कार अशर भोपाली जी की पुण्यतिथि है, तो उनको मेरे भारतीय परिवार की तरफ से श्रद्धांजलि देते हुए और उनको याद करते हुए कार्यक्रम में उनके लिखे कुछ गीत शामिल कर रहे हैं। तो आइए सुनते हैं उनका लिखा ये गाना।

Thank you.

0: फरमाए, नई दिल्ली। हम चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे, जरूर मुझ तक पहुँच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
1: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए

bir özlemi yok, o sözü havlandırıyor. Durulmuş, o sözü

Empire

科的这个年代，整它要

समुदायों के बीच हर वर्गों के बीच आज इनको याद किया जा रहा है। इसमें लंबे वर्षों तक किसी को सम्मान देना, उनको याद रखना, उस व्यक्ति में जरूर कुछ ऐसे गुण रहे हैं, ऐसा उन्होंने इतिहास रचा है जिनको लोग सदियों से याद करते आ रहे हैं।

आदमी की कोशिश हो रही है। ये कार्यक्रम इसीलिए भी हमारे राज्य के किसानों के लिए विशेष है क्योंकि इस कार्यक्रम में केवल

Come on.

सेना का गीत भी संगीत और गायक कलाकार थे कैलाश थे। आइए सुनते हैं अमित कुमार और आशा भोसले की आवाजों में बातों बातों में।

0: ये शब्दों से क्या था?
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहाँ उनके किनारे उनका घर था, जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले और एक झलक में देख लूँ, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेकिन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति राय चिराग रहते, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते, बाएं देखो तो सी.वाई. चिंतामणि जैसा पत्रकार था।

0: चीज ऐसी है, रशिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है, ये लगता मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
1: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला गाना अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज की आवाजों में है। मजनू सुल्तानपुरी का लिखा यह गीत है, संगीत आनंद।

Ah, je pense que c'est bien.

0: में पढ़ी तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहाँ उनके राज उनका घर था। जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले और एक झलक में देखूं क्या जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
1: लेकिन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
0: आगे देखो तो रघुपति सहाय सिराज रहते, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते, बाएं देखो तो शिवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
1: वो है जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
0: पहले लिखा तुम्हें शिक्षक है और आगे भाभी बीमार है, छुट्टी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो

you love me.

दिल्ली का विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व

someone just

शिष्य किसी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग उसकी मीटिंग राउंड शुरू किए हैं जिसमें बीजी स्वयं यहाँ ऑनलाइन पूछते हैं उन्हें तो राज्यों की मीटिंग होगी। आज जैसे बिहार की मीटिंग था आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव की उसके उच्च स्तरीय

0: बच्चे में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहाँ उनके रायरन का घर था, जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले और एक झलक में देख लूँ कि जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
1: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
0: आगे देखो तो रघुपति साहब चिराग रहते, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते, बाएं देखो तो शिवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
1: वो है जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
0: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, किसी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा

रहे।

0: कितनी बेशब्दी से क्या था
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहाँ उनके रह उनका घर था। जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले और एक झलक में देखूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेकिन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय सिराज रहते, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते, बाएं देखो तो शिवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो है जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुट्टी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है,